सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 30, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: FM 102.4 MHz पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे स्टेशन, अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि

0: फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Minister of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. The National Testing Agency has said that it is fully prepared for a smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers,

0: Chief Justice Surya Kant and Justice V. Mohan observed yesterday that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said it was concerned about the misutilization of public money, which should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में आज चर्चा का विषय है हरे चारे के उत्पादन पर। आइए जानते हैं इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करते हैं हरे चारे के उत्पादन विषय पर। कृषक मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुओं के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित कराने के लिए हरे चारे का उत्पादन साल भर किया जा सकता है। नेपियर, ज्वार, बाजरा, मक्का और बरसीम प्रमुख फसलें हैं जो 25 से 80 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी, नत्रजन और सही फसल चक्र अपनाकर, जैसे ज्वार के बाद दलहन को अपनाकर उच्च पैदावार ली जा सकती है। आइए अब बातें करते हैं हरा चारा उत्पादन की प्रमुख बातों के बारे में। इसकी प्रमुख फसलें हैं नेपियर घास, गिनी घास, सुडान घास, बरसीम, रिचका, मक्का और ज्वार। आइए एक एक करके इन फसलों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले बातें करते हैं ज्वार की। ज्वार, जिसे सोर्थम बाइकलर के नाम से भी जाना जाता है, गर्मी और बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली यह एक महत्वपूर्ण अनाज वाली चारा फसल है। ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर ज्वार को देश के सभी हिस्सों में उगाया जाता है। वास्तव में चारा फसलों में यह अधिकतम बुआई योग्य क्षेत्र में उगाया जाता है। सूखा एवं अधिक वर्षा का इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी एक कट वाली, दो कट वाली और बहु कट वाली देसी प्रजातियां और संकर प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा 1 से 6 कटाई में प्राप्त हो जाता है। फसल को 50% फूल आने की अवस्था में अथवा सिंचाई के बाद फूल आने से पहले की स्थिति में काटना चाहिए, जिससे कि प्रूसिक एसिड और साइनाइड जहर से इनको बचाया जा सके। यह फसल हे और साइलेज बनाने के लिए भी उपयुक्त है। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं PC1, PC6, POSO9, POSO23, HC136, HC171, POS C1, PANTCHARI 5, PANTCHARI 6 और संकम सौरघम सूडान। ये थी ज्वार की बातें। अब बरसीम के बारे में बात करते हैं। बरसीम, जिसे ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम के नाम से भी जाना जाता है, यह सर्दी में उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। यह नवंबर से मई महीने के बीच में 6 से 7 कट देती है, जिनसे लगभग 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर स्वादिष्ट एवं पोषक चारा प्राप्त होता है। बरसीम चारे को दूध बढ़ाने वाला चारा भी कहते हैं। दलहनी फसल होने के कारण यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा यानी मिट्टी में ही समाविष्ट करती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं इसकी JB1, BL1, BL10, BL42, UPB110 और मस्कावी और बरदान। अब रिचका की बात कर लेते हैं। रिचका, जिसे मेडिकागो सटाइवा भी कहते हैं, रिचका को चारे की रानी के रूप में जाना जाता है। भारत में बरसीम और ज्वार के बाद उगाई जाने वाली यह सबसे अधिक प्रचलित चारा फसल है। यह फसल नवंबर से जून तक 7 से 8 कटिंग देती है, जिनसे लगभग 60 से 80 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। इस चारे में लगभग 20% कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। यह फसल हे बनाने के लिए उपयुक्त है। महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं T9, A2, A3, RL88, LLC5। लोबिया की बात करें तो लोबिया, जिसे विग्ना अंगू

लेटा भी कहते हैं, इसे दलहनी फसल को सिंचित एवं असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में उगा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा इसको पूरे भारत में बहुतायत से उगाया जाता है। यह बहुत शीघ्रता से बढ़ती है और लगभग 25 से 45 टन प्रति हेक्टेयर उपज दे सकती है। इसको हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं ईसी 4216, UPC 287, UPC 5286, JFC 1 और GFC 4 है। कटाई कब करनी चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली कटाई बुआई के 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद हर 25 से 30 दिन में यह कटाई योग्य हो जाती है। उन्नत तकनीक व प्रबंधन अपनाकर हरे चारे का प्रबंधन किया जा सकता है। हरा चारा का उत्पादन, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। सभी कृषक भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने जाना हरे चारे के उत्पादन पर कुछ विशेष जानकारियां। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, आपने ट्यून किया है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है चिंतन। असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। असफलता से कोई डरता नहीं अगर वो उसे समझता हो। हर असफलता एक सीख है, एक दिशा है जो आपको ये बताती है कि अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने हजार तरीके सीखे कि कैसे नहीं करना है, और यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। असफलता को हार नहीं एक अनुभव मानिए श्रोताओं, जो आपको मजबूत बनाता है। युवा वर्ग को आज ये समझना होगा कि जो गिरता नहीं वो कभी चलना नहीं सीखता। तो अगर आप असफल हुए हैं तो समझिए कि आप सीखने की राह पर हैं। रुकिए मत, सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद वही प्रयास आपको जीत दिला दे। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देश गान के साथ।

संवेद स्वरों में भी आपने सुना ये देशगान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ श्रोताओं आप बने हुए हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ, और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आगे सुनते हैं माँ भगवती के भजन। आवाजें हैं उदित नारायण और राधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में नील का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। नील राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि नील ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

श्रोताओं, आइए आपको बता दें 20 जून यानी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। श्रोता, 19 जून सन 1857 में हुए सैन्य विद्रोह के दौरान 1 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विरोधियों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था, लेकिन 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने किले पर हमला कर दिया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई खूब बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों के किले पर कब्जा नहीं करने दिया, मगर लड़ाई के दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन यानी 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में ये ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में यानी 20 जून तक किले पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 20 जून की तारीख देश और दुनिया में कई अन्य घटनाओं की भी गवाह रही है। 1877 में 20 जून यानी आज के दिन ही मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल को लोगों के लिए खोल दिया गया था। विक्टोरियन गोथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला की झलक देखने वाले इस स्टेशन को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। निर्माण के समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, लेकिन सन 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। हालांकि इसके लघु रूप में ये आज भी वीटी के नाम से मशहूर है। और श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। और आज ही के दिन काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ था सन 2000 में। सन 2008 में आज ही के दिन बीज बनाने वाली कंपनी अवदात इंडियन लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी लिमरागन के सोयाबीन बीज के कारोबार का अधिग्रहण किया था। आज ही के दिन सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई थी। और श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1958 में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन सादगी और संघर्ष की जीवंत मिसाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिवस है। आप हम सभी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1952 में जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि विक्रम सेठ का भी जन्म हुआ था।

आज ही के दिन सन 1923 में कुशल पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष का भी जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म आज के दिन ही सन 1869 में हुआ था। हिंदी के ध्वजवाहक पत्रकार और साहित्यकार रहे वेंकटेश नारायण तिवारी का निधन आज के दिन ही सन 1965 में हुआ था।

0: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए,
0: जरा सुनिए।
1: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
0: जरा सुनिए।
2: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष आए हैं एक अलग विषय के साथ। और आज के कार्यक्रम का जो विषय है, हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कल 21 जून है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, योग हमारी काफी प्राचीन भारतीय परंपरा का एक उदाहरण है। और योग का जो संदेश है, इसके अनुसार यह आत्मा और परमात्मा का एक जुड़ाव है। यह केवल एक शारीरिक आसन नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की जीवन शैली है। योग को अपनाने से जहां हमें आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता का बोध होता है, तो वहीं दूसरी ओर हमें जागरूकता और अनुशासन का भी बोध होता है। और श्रोताओं, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की जो थीम है, वह है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग बढ़ती उम्र में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम है। और श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम का यही विषय है। और आज के कार्यक्रम में योग पर ही बातें करने के लिए हमने आमंत्रित किया है शहर की ही एक योग प्रशिक्षिका को। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
3: नमस्कार, मैं सतवंत कौर, योग प्रशिक्षिका हूँ। मैंने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से योग सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसके बाद मैं योग प्रशिक्षिका रही हूँ। आज मैं योग से जुड़ी हुई हूँ। जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने काफी सारी योग प्रतियोगिताएं जीती हैं और आज अभी भी मैं बच्चों को योग सिखा रही हूँ।
2: जी, तो सतवंत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम आज योग पर ही केंद्रित है।
3: जी,
2: तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि योग क्या है और यह क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए।
3: जी, जैसे कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, स्थिरम सुखम आसनम, बिना हलचल के किसी स्थिति में सुख पूर्वक बैठना, जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, वो आसन है योग है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक बहुमूल्य देन दी है, योग, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। चुस्ती, फुर्ती और बीमारियों को इससे भगाया जाता है। तन से मन को, मन को मस्तिष्क से जोड़ता है योग, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
2: जी, इसीलिए यह योग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी
3: है।
2: और जैसा कि आजकल हमारी जीवन शैली बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह ग्लोबल युग है। इस बदलती हुई जीवन शैली के कारण हमारे आसपास रहने वाले कई सारे लोग नई नई बीमारियों के भी चपेट में आ रहे हैं, तो इसमें योग क्या मदद कर सकता है।
3: जी, कहते हैं जान है तो जहान है। जी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बहुत सारे बहुव्यापक रोग जो है उनसे दूर हो सकते हैं, अगर हम नियमित रूप से इस योग को अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या का अंग बनाएंगे, अगर कुछ समय अपनी इस भागम भाग की व्यस्त जिंदगी से निकालकर हम कुछ समय योग को देंगे, तो हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ सुंदर बन जाएगा और जो बहुव्यापक रोग हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आजकल हर एक इंसान को कोई ना कोई बीमारी लगी है। कोई मोटापे से ग्रस्त है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है। अब मोटापा और डायबिटीज ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम योग करके दूर कर सकते हैं। जैसे उत्तान पादासन, नौकासन है, इससे हमारा डायबिटीज और मोटापा दूर होता है। थायराइड जैसी बीमारी आजकल बहुव्यापक हो चुकी है। सर्वांगासन की माला, जैसे कि पहले विपरीत करनी में, फिर 90 डिग्री एंगल पर, फिर सर्वांगासन करके हम ये थायराइड से भी मुक्ति पा सकते हैं। सिंहासन एक ऐसा आसन है जिससे थायराइड और गले के रोगों से मुक्ति मिल सकती है।

0: सकती है। इस तरह इस समाज के बहुव्यापक रोगों से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें योग को अपनी दिनचर्या का अंग जरूर बनाना पड़ेगा और इसके लिए हम सूर्य नमस्कार को जरूर अपनाएं। सुबह शाम जब हमें समय मिले सूर्य नमस्कार करें, इससे हमारे बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे, शरीर लचीला हो जाता है और मन स्वस्थ होता है।
1: जी हाँ, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या इसके पहले हमें कुछ सावधानियों का भी ख्याल रखना चाहिए कि खाने के पहले या खाने के बाद योग करने का सही तरीका क्या हो सकता है?
0: जी, जब आप योग स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रशिक्षक के सामने ही स्टार्ट करें ताकि आप सही ढंग से योग कर सकें। इसके लिए एक तो 3-4 घंटे से पूर्व आपका खाना खाया हो, पेट खाली होना चाहिए। दूसरी बात है स्वच्छ वातावरण में करना है। तीसरी बात कि आप जहाँ भी करते हैं योग वहाँ स्वच्छ बिस्तर या मैट बिछाकर हम योग करते हैं। पहले जितना आसन हमारे से होता है स्लोली स्लोली उसे आस्ते आस्ते अभ्यास के दौरान आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि हमने फुर्ती से इस आसन को किया और कहीं जर्क पड़ गया। आसन को बहुत ही सहजता से हमें करना है, क्रमवत तरीके से। जैसे हम सर्वांग आसन करते हैं तो पहले उसको विपरीत करनी में करना है, फिर 90 डिग्री लाएंगे, फिर 90 डिग्री से सर्वांग आसन आएंगे, फिर सर्वांग आसन से हलासन में जाएंगे। ऐसे ये क्रमवत के हिसाब से हमें योग करना है और प्रत्येक योग के बाद में हमें शवासन लेना जरूरी है। शवासन का मतलब है सांस लेना और छोड़ना। इसमें जितना हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो कि शरीर के अंदर जाता है उससे अधिक समय हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में लगाना है। इस स्थिति को हम शवासन कहते हैं और आसन के बाद इससे हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, मन को शांति मिलती है।
1: जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आजकल तनाव और डिप्रेशन के कारण हमारे समाज के कई युवा आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने में या तनाव प्रबंधन में योग क्या भूमिका अदा कर सकता है?
0: जी, हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि आज नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण हमारी युवा वर्ग, किसान वर्ग ये आत्महत्या करने लगे हैं। सो इस डिप्रेशन से बचने के लिए अगर हम अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा, शवासन जैसे आसनों को करते हैं, इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। आसन करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं और शरीर लचीलापन शरीर में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, अपने आप में चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति भर जाती है और हमारा मन हमेशा ऊंचाई की ओर जाता है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पनपती है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग योग को अपनाते हैं तो हमारा यह डिप्रेशन सदा के लिए दूर हो जाएगा और हमारे युवा वर्ग, बच्चे जो पढ़ते हैं, जो सिर्फ नंबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं ना कि नंबरों को बढ़ाएं। इस वजह से भी उनमें ये डिप्रेशन की भावना आ जाती है। सो हम योगा करेंगे, योग आसनों का लाभ उठाएंगे तो हमें इस बीमारी से स्वतः ही हम उसे बच सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि योग के प्रयोग से हमारा शरीर निरोगी ही नहीं बल्कि तनाव मुक्त भी हो सकता है।
0: योग युक्त रोग मुक्त हम रह सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है ये कि योग युक्त रहने से हम रोग मुक्त जरूर हो सकते हैं। तो चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मौसमी फलों का उपयोग हमें अपनी दिनचर्या में करना चाहिए और जितना भी हो सके हमें खुश रहना है क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। कहते हैं कि ये हमारा जो फेस है ये एक तरह से हमारा आईना है। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ये हमारे मन को दर्शाता है। सो अगर हमारी युवा पीढ़ी इस योग पर अपना समय दे तो उनका यह जीवन बहुमूल्य बन जाएगा और बीमारियों से निजात मिलेगा क्योंकि पहला सुख निरोगी काया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे योग अपनाएं निरोग रहें। इसी विषय पर शहर की ही योग प्रशिक्षिका सतवंत कौर जी के द्वारा दी गई जानकारी को उम्मीद करते हैं श्रोताओं आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी योग के प्रति जागरूक होते हुए दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए।
4: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
3: जरा सुनिए,
5: कार्यक्रम जरा सुनिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता आपने सुनी, योग अपनाएं निरोग रहें। भेंट वार्ता करती योग प्रशिक्षिका सतवंत कौर और इनसे बातचीत कर रहे थे विवेक आदित्य। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे गौतम मिश्रा और साथी। और इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि।

0: बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे आधुनिक गान, कलाकार थी अन्वेषा। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम और स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में भेंट वार्ता का विषय है प्रसव पश्चात डिप्रेशन। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर स्तुति केडिया और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रसव के बाद महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। ये डिप्रेशन होता क्यों है और इसका क्या असर स्वास्थ्य पे पड़ता है, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्तुति केडिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहिबा। प्रसव पश्चात डिप्रेशन, ये है क्या?
2: ये प्रसव पश्चात एक मानसिक तनाव है जो आज के समय में हमें बहुत देखने को मिलता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह अगर मैं बोलूं तो मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो हमें उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट को कुछ मानसिक तनाव या डिप्रेशन है।
1: तो इसका तनाव का क्या असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है या फिर उनके साथ जो बच्चा है?
2: सबसे पहली चीज मैं आपको कारण बताना चाहूंगी कि कई बार ये तनाव इसलिए होता है क्योंकि उस महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसका प्रसव का जो समय है उसमें उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता है। या तो प्रसव के दौरान उसको बहुत अधिक पेन या ऑपरेशन हुआ है जिस वजह से उसका मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर कई बार ऐसा हम देखते हैं कि फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, या तो उन्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, और अगर वही जेंडर का बच्चा नहीं होता है तो पेशेंट के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, मानसिक तनाव बहुत होता है। दूसरी चीज होती है थायराइड। जिन पेशेंट्स को थायराइड की बीमारी होती है प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले, इन मरीजों को भी बाद में पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के बहुत चांस होते हैं। चौथी चीज होती है दूध ना पिला पाना या स्तनपान नहीं करा पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसमें माँ को ऐसा लगता है कि वो हार गई है, वो सही से अपने बच्चे का पालन नहीं कर पा रही है। और ये लैक्टेशन फेलियर या स्तनपान नहीं करा पाना आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसके कई कारण होते हैं बट मैं अभी आपको यही बोलूंगी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। दूसरा है नींद ना पूरी हो पाना। बच्चा छोटा होता है, माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण भी कई बार काफी मानसिक तनाव आ जाता है।
1: मानसिक तनाव अगर है तो निश्चित तौर पर उसका असर महिला के स्वास्थ्य पे पड़ता होगा, बच्चे की देखरेख में भी कमी हो जाती होगी। क्या बताना चाहेंगे महिलाओं को कि अगर वो डिप्रेस्ड है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिप्रेशन है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रोल निभाता है तो वो होता है उसका हस्बैंड, उसका पति, क्योंकि वो ये बात को सबसे जल्दी भाप लेता है कि मेरी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है या वो डिप्रेशन में है। इसमें पूरे फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है कि वो हर तरीके से माँ और बच्चे की भी देखभाल अच्छे से करे। माँ को कहूंगी कि परेशान बिल्कुल मत होइए, ये जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से रहेंगे, आप मानसिक रूप से ठीक रहेंगे तो वही सारे जो चीजें होती हैं वो आपके बच्चे में भी जाएंगे। आप स्तनपान कराते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, तो वही सारे थॉट्स, वही सारी फीलिंग एक बच्चे में भी जा रही है। तो परेशान मत होइए, सब चीजें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, बस आप अपना ध्यान रखिए और फैमिली उनको प्लीज, पति और सास ससुर सबका ये जिम्मेदारी होती है कि इस समय उनका ध्यान रखे।
1: क्या इसका कुछ दूरगामी परिणाम होता है, आगे चलकर कुछ ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है महिला को?
2: अधिकतर महिलाएं इससे अच्छे से उभर जाती हैं, बट बहुत कुछ थोड़ी सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो जिनका ये चीज लंबा हो जाता है और वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस बन जाता है। ये महिलाओं को फिर हमारे को इनको हमें मनोवैज्ञानिक के पास भेजकर इनका प्रॉपर अच्छे तरीके से इलाज और दवाइयां चलानी पड़ती हैं।
1: अंत में आप हमारी उन महिलाओं को या फिर उनके परिवार वालों को क्या सलाह देना चाहेंगी जिनके घर में अगर कोई बच्चा है छोटा और उनकी माँ डिप्रेस्ड हो जाती है? तो
2: मैं यही सलाह दूंगी घर वालों को कि आप मरीज को ध्यान रखें, उन्हें संभालें, उनकी

0: इस मनोदशा को पहचाने और सारा प्रयत्न करें उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए। आपकी भी जिम्मेदारी होती है बच्चे के प्रति, तो बच्चे का जितना ध्यान एक माँ को रखना है उतना ही घर वालों को भी रखना है।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ दी। उम्मीद है हमारी महिला श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, प्रसव पश्चात डिप्रेशन। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर स्तुति केडिया और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870001424।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम हाजिर होंगे फिल्मी गीतों के सफर के साथ, फिल्म संगीत के साथ। 9:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरंजना और 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के अंक में हमने शामिल किया है ख्याल गायन राग शुद्ध वर्णी में। कलाकार होंगे पंडित जसराज। 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार और 10:20 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ हम हाजिर होंगे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में

0: या जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: We have been able to achieve that in the first.
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं। और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं, और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: They are all designed in India now.
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है, और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers.

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000

0: 880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी, कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन एक स्वर्ण और एक रजत पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर जन कल्याण शिविर भी लगेंगे, जहां समस्याओं का समाधान और योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
1: 20 तारीख को ठीक 2 बजे 20 जून का दिन पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में डालेंगे। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में जनता की जायज समस्याओं का समाधान होगा।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रांची और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के जैप वन परिसर में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में नए लाभार्थी, युवा और विभिन्न क्षेत्रों की नियुक्ता शामिल हुए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तनवीर अहमद ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे देश में औपचारिक रोजगार और युवाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
2: रांची में करीब 400 लोग नियोक्ता जो एम्प्लॉई हैं, सबकी भागीदारी बहुत अच्छी है। सोच है विकसित भारत की, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को सारे नियोक्ता और जो लोग आए हैं यहाँ पर उन सबका धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है कामयाब होगा।
0: इधर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। योजना के तहत 2 वर्षों में 3,50,00,000 रोजगार का लक्ष्य है। पहली नौकरी पर युवाओं को 15,000 रूपए और कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रूपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सांसद जोबा मांझी ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने कहा कि तय सीमा के भीतर सदर अस्पतालों की कमियां दूर न होने पर संबंधित सिविल सर्जन को पद से हटा दिया जाएगा।
3: 15 दिन का मैंने मोहलत दिया है कि हर बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। खामियां आ रहा है तो खामियों को ठीक कीजिए और अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो मैंने 15 दिन तक का समय दिया सब सिविल सर्जन को हटा दें। जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं और रेफर हॉस्पिटल हैं वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है अपना, सब 108 के भरोसे है। तो जब मैं डिटेल मांगा तो बता रहा सर सारा एम्बुलेंस खराब है।
0: उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में एम्बुलेंस की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार 224 नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। रांची में ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। कल महात्मा गांधी रोड पर मॉडिफाइड बाइक, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और बिना हेलमेट वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में 10 से ज्यादा मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं, जिनके साइलेंसर मौके पर ही खोलकर ऑनलाइन चालान काटे गए। इसके अलावा पॉल्यूशन फेल वाहनों और बिना हेलमेट चलने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड

0: कि करीब 8 से 10 फीसदी आबादी सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि राज्य में इस आनुवांशिक बीमारी का प्रसार काफी अधिक है।
1: प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग इसको और इंटेंसिफाई कर सकें, क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें राज्य के नागरिकों को। सही सब भी आई हुई थी, ट्रेनिंग कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल है, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी की क्या गंभीरता है, राज्य सरकार का क्या योगदान है।
0: और शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा में स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में व्यापक स्तर पर योगाभ्यास चल रहा है। कई गांवों से हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्थानीय योग प्रेमियों और प्रशिक्षकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वैश्विक पहल से लोगों में सेहत के प्रति क्रेज बढ़ा है और योग से बीपी तथा शुगर जैसी बीमारियां नियंत्रित हो रही हैं।
4: जब से योग दिवस स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, तब से हम लोग योग से काफ़ी जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके योग करते हैं और 21 जून को गांधी मैदान में लगभग 400 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और योग करेंगे।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल आज और कल खुले रहेंगे। शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित होंगे। यहां योग गतिविधियां होंगी। शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है और कार्यक्रमों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून के राज्य में कई अन्य हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन राज्य के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आरव यादव ने ट्रैक पर तेज रफ्तार दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं हजारीबाग के नूर आलम ने शानदार खेल दिखाते हुए रजत पदक जीता। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही प्रतियोगिता में मेजबान झारखंड के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इन पदकों में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मांडर में 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री ही म्यूटेशन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, डीवीसी क्षेत्र के 6 जिलों में बिजली को लेकर ज्वाइंट वेंचर। प्रभात खबर लिखता है, 1 जुलाई से रांची से 4 विमान सेवाएं होंगी बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची संघ कार्यालय के बाद कानपुर और लखनऊ में धमाके की थी तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी। कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। अनुकूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। तीसरे दिन एक स्वर्ण और एक रजत पदक पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, घबराहट के घंटों में या उन पलों में जब दिल खुशी से भर जाता है, कुछ संगीत, कुछ धुन बस करीब होती है जो हमें गीत बनने का इंतजार कर रही होती है। हम बीते कल के बॉलीवुड संगीत को परिभाषित करने वाले गीतकार और संगीत रचना की कला के प्रति अपने प्रेम पर पूरा अध्याय लिख सकते हैं, लेकिन इतना कहना ही काफी है कि उन क्लासिक्स का जादू केवल एक अच्छी धुन तक सीमित नहीं है। श्रोताओं, कल विश्व योग दिवस है और साथ ही विश्व संगीत दिवस। योग और संगीत के बीच जो सामंजस्य बनता है, उसे हम मनुष्य अपने ही जीवन में अपनाते हैं। जितना ज्यादा योग करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से संगीत हमारी मन को शांति देती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। श्रोताओं, ये वो संगीत ही है जिसने हमें गहराई से छुआ। ऐसी धुनों में पिरोए गए शब्द जिन्होंने भावनाओं की लहरों पर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुखद यादों को जीवंत करने और नुकसान के उस तीव्र दर्द को महसूस करने के लिए जिसे उन लोगों ने अनुभव किया जिन्हें हम वास्तव में कभी जानते ही नहीं थे। श्रोताओं, संगीत ने हमें ना सिर्फ भावना दी बल्कि जीवन में कभी ना हार मानने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कई गीत, कई संगीत ऐसे हैं जिन्होंने कई हारे हुए व्यक्तियों को भी अपनी जीत की मशाल जलाने पे मजबूर कर दिया।

श्रोतो, ये गीत जो हम अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल। श्रोतो, एक दिन ऐसा आएगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा और पीछे जो बचेगा वो केवल हमारे शब्द और हमारी विरासत होगी। इसलिए हमें

ये सुनिश्चित करना है कि हम दुनिया को वैसे ही छोड़ें जैसे हमने पाया था, या बल्कि कहें तो उससे और बेहतर। हार न माने, चाहे दुर्भाग्य आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न डाल दें। मृत्यु आपको आपके खोए हुए प्रियजन से तो मिला देगी, लेकिन ये तड़प, ये जुदाई, ये उदासी के पल, ये अस्थाई हैं। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है और बिना डर के जीवन जीना है।

श्रोताओ, सफल होने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना बंद करना होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। कुछ लोग हमेशा हमारी आलोचना करेंगे और उन पर ध्यान देना व्यर्थ है। कभी कभी किसी की टिप्पणी हमारे मूड को खराब करने के लिए काफी होती है, लेकिन हमें इन चीजों से प्रभावित नहीं होना है। इसके बजाय बिना किसी पछतावे के अपने जीवन का हर पल अपने नियमों के अनुसार हमें जीना है।

0: किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है आर जी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा

0: स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें परिवेशकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी SKM मेलानंदन पर एक विशेष कार्यक्रम। श्री मेलानंदन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के एक मैच में आज मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस समय ग्रुप डी के एक मैच में तुर्की का सामना पैराग्वे से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सुरंजना।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरंजना में। सुरंजना के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सादर नमस्कार, जोहार और जय हिंद। श्रोताओं, आज है तारीख 20 जून। आज का दिन भारत के इतिहास, भारत के वर्तमान और भारत के इस विशाल परिवार के लिए एक बेहद पावन और ऐतिहासिक दिन है। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन सादगी और संघर्ष की जीवंत मिसाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म दिवस है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने उड़ीसा के एक अत्यंत पिछड़े और सुदूर आदिवासी गांव से निकलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित भवन राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। उनका ये सफर एक राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए दिल को समेट कर देश की सेवा में समर्पित कर देने की। ये कहानी है समाज की रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की, और ये कहानी है भारत की हर उस बेटी के लिए उम्मीद की किरण बनने की जिसे लगता है कि उसकी परिस्थितियां उसके प्रगति के आड़े आ रही हैं।

आज उनके इस पावन जन्मदिन के अवसर पर आइए श्रोताओं, हम उनके जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जो संघर्ष की स्याही से लिखे गए हैं, और ये समझते हैं कि कैसे उनका जीवन भारत की प्रत्येक महिला के लिए एक अमर प्रेरणा है।

कार्यक्रम सुरंजना श्रोताओं आप सुन रही हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा नामक एक छोटे से गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम पुती टूडू था, जिसे बाद में स्कूल के एक शिक्षक ने बदलकर द्रौपदी रख दिया था। उस दौर में और विशेषकर एक ऐसे क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर था, एक आदिवासी लड़की के लिए शिक्षा प्राप्त करना किसी सपने जैसा था। ऊपरबेड़ा में लड़कियों को पढ़ाना तो दूर, लड़कों के लिए भी उच्च शिक्षा एक चुनौती थी। लेकिन द्रौपदी जी के भीतर पढ़ने की एक अलग ही ललक थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव से पूरी की, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी। अपने दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वे भुवनेश्वर आईं। उन्होंने राजधानी के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। वो अपने पूरे गांव की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। श्रोताओं, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये मायने नहीं रखता। आपके भीतर आगे बढ़ने की कितनी तड़प है, सारा खेल इसी बात का है। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो अपनी इच्छा शक्ति को ही अपना सबसे बड़ा संसाधन बना लीजिए। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी व्यवहारिक यात्रा शुरू की। सन 1979 से 1983 तक उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने अपने परिवार को संभाला, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा जिंदा रहा।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुरंचना और आज हम बातें कर रहे हैं भारत की सबसे जाबाज महिला के बारे में, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रोताओं, उनके व्यवहारिक यात्रा के बाद उनका दौर और भी खूबसूरत था। उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक मानद शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाया। यहाँ वे बच्चों से वेतन नहीं लेती थीं, बल्कि बच्चों को शिक्षित करना ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया था। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर समाज की कमियों को देखा। उन्होंने जाना कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे किसी भी पिछड़े समाज की किस्मत बदली जा सकती है। आज भी जब वे राष्ट्रपति के रूप में बच्चों से मिलती हैं, तो उनके भीतर की वही सहज और ममतामयी शिक्षिका साफ नजर आती है। श्रोताओं, कहते हैं कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही कुंदन बनता है। द्रौपदी मुर्मू जी का निजी जीवन दुखों की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर किसी भी कमजोर इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन उनके हौसले फौलाद के बने थे। सन 1980 में उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू जी से हुआ, जो एक बैंक अधिकारी थे। उनके घर दो बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर नियति ने उन पर दुखों का ऐसा पहाड़ तोड़ा कि कोई एक आम इंसान शायद कभी ना उठ पाता। उनके एक युवा बेटे की मृत्यु हो गई। एक माँ के लिए जवान बेटे की अर्थी उठाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। 3 साल के भीतर ही उनके दोनों बेटों को खो देना किसी भी माँ को मानसिक रूप से समाप्त करने के लिए काफी होता है। श्रोताओं, लगभग 6-7 साल के काले कालखंड के भीतर उन्होंने अपनी माँ, अपने पति और अपने भाई को भी खो दिया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, अकेलापन और असहनीय दर्द था। कोई भी साधारण व्यक्ति स्थिति में अपनी सुध-बुध खो बैठता या अवसाद के गहरे अंधेरे में डूब जाता, लेकिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस असीम दर्द को देश और समाज की सेवा की शक्ति में बदल दिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आध्यात्म का सहारा लिया, ध्यान और राजयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और खुद को पूरी तरह से समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। श्रोताओं, जीवन कभी कभी हमें मोड़ पर, एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ खत्म होने लगता है, लेकिन एक महिला के भीतर सृजन की शक्ति होती है। वो अपने आंसुओं को भी समाज को सींचने वाले पानी में बदल सकती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जीवन हमें सिखाता है कि मानसिक रूप से मजबूत होना ही महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए जीने लगता है, तो नियति खुद उसके लिए रास्ता बनाने लगती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राजनीतिक सफर उनके जमीनी जुड़ाव और उनकी ईमानदारी की प्रमाण है।

लव 4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुरंजना। एक मंत्री के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पूरे राज्य में परिवहन कार्यालयों का जाल बिछाया और अपनी कार्यकुशलता साबित की। उनकी इसी ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण को देखते हुए साल 2007 में उड़ीसा विधानसभा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए प्रतिष्ठित पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2015 में वे झारखंड की 9वीं राज्यपाल नियुक्त की गईं। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं और साथ ही किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी थीं। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल बेहद गरिमामयी और ऐतिहासिक रहा। और फिर आया साल 2022। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया सूर्योदय हुआ। एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता और 25 जुलाई सन 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रोताओं, ये केवल एक पद की शपथ नहीं थी, ये भारत के संविधान की उस ताकत की शपथ थी जो ये कहती है कि हर देश, इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या सुदूर क्षेत्र से आता हो, देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठ सकता है। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वो अब तक भारत के इतिहास की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं।

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये कथन आज के दौर में भारत की हर महिला पर लागू होता है और इस कथन का सजीव रूप है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन पर भारत की हर बेटी को खुद से एक वादा करना है, वादा अपने सपनों को ना छोड़ने का, वादा हर परिस्थिति से डट कर मुकाबला करने का और वादा एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर भारत की इस महान बेटी, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि बधाई देते हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको उत्तम स्वास्थ्य दे ताकि आपका मार्गदर्शन और आपकी ये प्रेरणादायक जीवन यात्रा सदियों तक हम भारतवासियों की आने वाली पीढ़ियों का पथ आलोकित करती रहें। राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जोहार। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन राग शुद्ध वर्णी में। कलाकार हैं पंडित जसराज।

शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ख्याल गायन राग शुद्ध वरारी में। कलाकार थे पंडित जसराज। और इसी के साथ हमारा आज का ये अंक शास्त्रीय संगीत का अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से। और फिर 10:10 पर आप सुनेंगे विश्व दर्पण समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश

0: विकास दास, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें परिवेशकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांश शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal farm today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Paharpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santali Jehera and Ho Jehera Skill Center and Paharpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of

0: कतर ने कहा है कि संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। ये बयान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस के बीच कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई बैठक के बाद आया। कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों तथा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे राजनयिक प्रयासों की भी समीक्षा की गई। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बन गया है। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे।
1: विवेक अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी विजय बताया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कार्यबल के लिए भारतीय शिष्टमंडल के पूर्व प्रमुख के रूप में उनके अनुभव से संस्था की क्षमता और मजबूत होगी। कार्यबल की पूर्ण बैठक में धनशोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बोस्निया, हर्जेगोविना और इराक पर निगरानी बढ़ाने तथा अल्जीरिया और नामीबिया को कार्यबल के ग्रे लिस्ट से हटाने का भी निर्णय लिया गया। श्री गाइल्स थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ। वे मेक्सिको की एलिसा डिएंडा मद्राजो का स्थान लेंगे। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल धनशोधन और आतंकवाद के खिलाफ धन मुहैया कराने पर अंकुश लगाने वाली मानक वैश्विक संस्था है। भारत 2010 से ही कार्यबल का सदस्य रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्मित एयरफोर्स वन विमान का अनावरण किया है। अगले महीने की शुरुआत में प्रेसिडेंशियल सर्विस में आने से पहले इस विमान की उड़ान शुरू होने की आशा है। प्रेसिडेंशियल बेड़े के मुख्य केंद्र ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस विमान का बड़ा आकार सर्वाधिक प्रमुख बदलाव है। उन्होंने घोषणा की कि एयरफोर्स वन विमान अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर नेशनल मॉल में आयोजित समारोह में फ्लाई पास्ट में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की में अगले महीने नेटो सम्मेलन के लिए भी इसके उपयोग पर विचार किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। बोर्ड ने इस वर्ष 1 अगस्त से शोधित समय सीमा और सख्त अनुपालन नियमों के साथ ओपन मार्केट शेयर खरीदने की व्यवस्था फिर शुरू करने को भी मंजूरी दी है। दुनिया भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
2: संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध

0: और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में 210 से अधिक भारतीय दूतावासों की भागीदारी सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में योग की भूमिका को दर्शाती है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। इससे पहले ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर ली। कैमरन बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर की बदौलत अमेरिका ने पहले हाफ में ही मैच पर पकड़ बना ली। मैक्सिको के बाद अमरीकी टीम नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली बार अमरीका ने एक मैच बाकी रहते हुए ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स का सामना स्वीडन से रात 10:30 पर होगा। दोहा डायमंड लीग में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रीलंका के रूमेश थरंगा पथिराज ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। नीरज चोपड़ा ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा निर्धारित 82.61 मीटर के लक्ष्य को पार कर लिया है। नीरज चोपड़ा को पहले ही 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 32 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उबरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने धर्मशाला में पहला एक दिवसीय मैच 7 विकेट से जीता था और इसके बाद भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में भी जीत हासिल की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी वार्ता के अगले दौर के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बना। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। विदेश में स्थित भारतीय दूतावास 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को हराकर पहली जीत दर्ज की। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हराकर नॉकआउट दौर में। और भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने 2026 दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्मी गीतों का सफर हम जारी करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप

0: माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, मेरी प्राथमिक शिक्षा भी मेरे लिए एक सपने जैसी थी। उड़ीसा के एक छोटी से मिट्टी के घर से निकलकर देश की प्रथम नागरिक बनने तक की ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि भारत की हर उस महिला की है जिसे कभी आगे बढ़ने से रोका गया। श्रोताओं, ये शब्द हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन है। उनका जीवन सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब एक महिला अपनी नियति खुद बदलने का फैसला कर लेती है तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। उड़ीसा के एक पिछड़े और दुर्गम गांव से उठकर राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर भारत की पूरी आबादी के लिए उम्मीद, साहस और अनंत संभावनाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। श्रोताओं, आज का ये दिन उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा वाला दिन है जो ये सोचती हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने संघर्षों से सीखते हैं और उसी सीख को एक नया आयाम देते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है हमारी आत्मशक्ति की परिभाषा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गुलाल का ये गीत। बोल, संगीत और आवाज सभी पीयूष मिश्रा के। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है श्रोताओं, और आपने ट्यून किया है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म चक दे इंडिया का ये गाना छतों अभी आपने सुना हिमा सरदेसाई की आवाजों में, बोल हैं जयदीप साहनी के और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ आप जुड़े हुए हैं श्रोताओं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, सदियों से समाज ने महिलाओं को कमजोर, कोमल और सहनशील कहकर एक दायरे में बांध दिया है। लेकिन जब एक महिला सशक्त होती है तो उसके भीतर का आत्मसम्मान जागता है। ये गाना जो हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत उस जागृति का प्रतीक है। ये महिलाओं से कहता है कि अब चुप रहने का समय बीत चुका है। ये अपनी अस्मिता, अपनी शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए समाज की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक शुरुआत है। श्रोताओं, कल योग दिवस है और साथ ही विश्व संगीत दिवस। योग और संगीत का सामंजस्य हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक तरफ जहां योग हमारे मन को शांत करता है, हमें स्वस्थ रखता है, वहीं दूसरी ओर संगीत भी हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। भारतीय संगीत में वो ताकत है श्रोताओं, जो किसी भी कमजोर या हारे हुए इंसान को जागृत कर सकता है। ये कह सकता है कि आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं।

फिल्म अस्तित्व का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। बोल लिखे हैं श्रीरंग गोडबोले ने और धुन बनाई है राहुल रानाडे ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म जब तक है जासे। आवाजें हैं नीति मोहन और सोफिया अशरफ की। बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत बद किया है AR रहमान ने।

फिल्म वीर जरा का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने और धुन बनाई है मदन मोहन और उनके बेटे संजीव कोहली ने।

फिल्म मर्दानी का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज में। बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और इस गाने को संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 11 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:05 पर हम वापस हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम भाव गीत। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

श्रोताओं नमस्कार। दोस्तों आज आपने क्या किया, आप बिना सोचे समझे जवाब देंगे, आज हमने योग किया। आजकल हर जगह बस योग की चर्चा है। योग में जीवन हो जिससे हम स्वस्थ रह सकें, मानसिक शांति के लिए योग बहुत ही जरूरी है। योग की शिक्षा में आपको एकाग्रता विकसित करने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। एकाग्रता का अर्थ होता है अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को दूसरे कामों में न लगाना। हम मानसिक स्थिति में सफलता की एक ही कुंजी की आशा करते हैं, वह है एकाग्रता। एकाग्रता की कमी का सीधा प्रभाव हमारी कार्यक्षमता और परिणाम पर पड़ता है। लोगों को एकाग्र मस्तिष्क की सफलता के पीछे का कारण मालूम ही नहीं होता। एकाग्र मन परेशानियों को अधिक तेजी से सुलझा लेता है। यह कहा जाए कि एकाग्र ऊर्जा के कारण परेशानियां अपने आप गायब हो जाती हैं। कई बार उन्हें सुलझाने की आवश्यकता ही नहीं होती और अवसरों को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एकाग्र रहने वाले व्यक्ति को प्रेरणा भी मिलती है। एकाग्रता हमारी शक्तियों को जागृत भी करती है। इसे प्रभावी बनाने के लिए हमें मस्तिष्क को स्थिरता की ओर केंद्रित करना होगा, जिससे हमारी इंद्रियां स्वतः स्थिर हो जाएंगी। और जब मस्तिष्क केंद्रित हो जाएगा तो उसके द्वारा किया गया हर कार्य सिद्ध होगा और इसके लिए हमें योग करना बहुत ही जरूरी है।

मेकअप सीट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थी जावेद अख्तर के, संगीत दिया था शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा ने। श्रोताओं, मौसम कभी बेहद गर्म हो जा रहा है, कभी कूल कूल। मौसम का बदलना हमें खुशनुमा एहसास दे जाता है, पर आज हम विकास के ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मौसम का बदलना जिया नहीं जाता, बल्कि मोबाइल की वेदर ऐप स्क्रीन पर केवल देखा जाता है। वह दौर कहीं पीछे छूट गया जब ऋतुओं का बदलना हमारे जीवन का लय तय करता था। आषाढ़ की पहले फुहार पर मयूर की तरह थिरक उठता मन, पलाश के फूलों को देखकर फागुन की आहट पा लेना और जाड़े की गुनगुनी धूप में आंगन में बैठकर अपनों के साथ गप्पे लड़ाना, ये केवल समय बिताने के साधन नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन बोध के अटूट, कभी नहीं टूटने वाले हिस्से थे। आज की कृत्रिम जीवन शैली का सबसे गहरा और मर्म स्पर्शी प्रभाव हमारी चेतना पर हुआ है। जब हम प्रकृति के चक्र से दूर हो जाते हैं तो हमारे भीतर की सहजता भी सूखने लगती है। कंक्रीट के भवनों और चौड़ी सड़कों ने धरती को इस कदर ढक लिया है कि नई पीढ़ी ने कभी बारिश की बूंदों को सीधे मिट्टी पर गिरते और उसमें उठते जीवन के संगीत को महसूस ही नहीं किया है।

जोड़ी क्या बनाई, वाह वाह राम जी। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार थे देव कोहली, संगीतकार आनंद राज आनंद। और श्रोताओं, बारिश जब होती है तो आसमान में बिजली का चमकना भी जरूरी होता है। अक्सर हम रूबरू होते हैं ऐसी खबरों से जो हमें आकाशीय बिजली से डर पैदा करता है, इसीलिए इससे बचाव जरूरी है। मेघ गर्जन की आवाज सुनते ही तुरंत किसी पक्के मकान या बंद गाड़ी में आश्रय लेना चाहिए। ऊंचे पेड़ों, धातु की चीजों, खुले मैदान से दूर रहें और तूफान थमने के बाद भी कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित स्थान पर ही रहें। जब आप घर के अंदर हों तो बिजली के उपकरणों से दूर रहें। टीवी, कंप्यूटर और अन्य प्लग इन उपकरणों का उपयोग नहीं करें और उन्हें अनप्लग कर दें ताकि पावर सर्ज से नुकसान न हो। पानी से बचे रहें। नल, शॉवर, बाथ टब का उपयोग नहीं करना चाहिए। धातु के पाइप बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। खिड़की और दरवाजे से दूरी बनाए रखें। तूफान के दौरान खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें।

ये थे मीका सिंह और उस्ताद सुल्तान खान। फिल्म थी जब वी मेट, बोल थी इरशाद कामिल की, संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं आकाशीय बिजली के बारे में और उससे बचाव के उपायों के बारे में। जब आप बाहर हों तो पेड़ों के नीचे नहीं छुपें, किसी भी अकेले या ऊंचे पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े नहीं हों। अगर आप स्विमिंग पूल, नदी या तालाब के पास हैं तो तुरंत बाहर आकर सूखे स्थान पर जाएं, यानी पानी से दूरी रहें, धातु की चीजों से दूर रहें। बाड़ यानी फेंसिंग, साइकिल या धातु के खंभों के संपर्क में नहीं आएं। यदि खुले मैदान में कोई सुरक्षित जगह नहीं हो तो उखड़ू बैठ जाएं, यानी अपने पैरों को आपस में सटाकर, घुटनों को छाती से लगाकर और सिर को दोनों हाथों से ढककर नीचे झुक जाएं। जमीन पर पूरी तरह नहीं लेटें, क्योंकि शरीर का जितना अधिक हिस्सा जमीन के संपर्क में होगा, खतरा उतना ही अधिक होगा।

0: धुरंधर दरिविंज फिल्म का ये गीत था। आवाजें थी शाश्वत सचदेव, जैस्मिन सैंडल्स और रैपर रिवल की। गीतकार थे जैस्मिन सैंडल्स और रिवल। संगीत दिया था शाश्वत सचदेव ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर से कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। श्रोताओं, बदलते दौर में करियर के विकल्प भी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे समय में संगीत अब केवल शौक या मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी बनकर उभर रहा है। हमारे कोल्हान की अग्रणी शिक्षण संस्थान जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का संगीत

इसी बदलाव की मिसाल बन रहा है, जहां छात्राओं को संगीत की शिक्षा के साथ साथ रोजगार की व्यापक अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विभाग में रोजगार परक संगीतिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां संगीत विषय में पीएचडी करने की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में ही यह अवसर मिलता है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में छात्राओं को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गजल और भजन की गहन शिक्षा दी जाती है। इसके साथ विशेष एक्टिविटी कक्षाओं तथा तबला वादन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर ठुमरी, सुगम संगीत और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े उन्नत पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं को विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलता है। संगीत केवल सुर और ताल का अभ्यास नहीं है, बल्कि आधुनिक दौर में एक सशक्त करियर विकल्प भी है।

वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल लुधियानवी की रचना थी, रवि ने धुन बनाई थी। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने पॉकेट मनी नाम से नया फीचर पेश किया है, जिसके जरिए 11 से 17 वर्ष तक के बच्चे और किशोर बिना अपने बैंक खाते के भी यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। यह फीचर एनपीसीआई के यूपीआई सर्कल सिस्टम पर आधारित है। इसके तहत माता पिता अपने बैंक खाते से बच्चों को नियंत्रित यूपीआई एक्सेस दे सकेंगे। बच्चे अपने मोबाइल फोन से सीधे भुगतान कर पाएंगे, जबकि पूरा नियंत्रण अभिभावकों के पास रहेगा। कंपनी के अनुसार यह फीचर बच्चों को डिजिटल पेमेंट और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार सिखाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके जरिए स्कूल कैंटीन, कैब, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी जैसे छोटे छोटे खर्च आसानी से किए जा सकेंगे। यह फीचर बच्चों को कम उम्र से डिजिटल भुगतान और पैसों के प्रबंधन की समझ देगा। छोटे छोटे खर्चों के लिए बार बार माता पिता पर निर्भरता भी कम होगी और बच्चे जिम्मेदारी के साथ खर्च करना सीख सकेंगे।

हम साथ साथ हैं। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण, शंकर महादेवन, हरिहरन और हेमा सरदेसाई की आवाज में। देव कोहली ने इस गीत को रचा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।

श्रोताओं, जून माह को मलेरिया रोधी माह भी कहा जाता है। मलेरिया एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलने वाले प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी शरीर में प्रवेश करने के बाद लीवर यानी यकृत और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसके मुख्य लक्षण हैं, 10 से 15 दिनों के भीतर लक्षण शुरू हो जाते हैं। कंपकंपी देकर तेज बुखार आता है और बुखार आम तौर पर चक्रों में आता है। उतरते समय पसीना बहुत आता है, तो इससे बचाव ही सुरक्षा है। इसके लिए हमें हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इससे बचाव हेतु हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। घर के आसपास या छत पर ऐसी कोई भी बेकार वस्तु नहीं रखें जिसमें

पानी जमा होता हो, साथ ही छत पर पानी टंकी को खुला नहीं छोड़ें। बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए। इसे अनदेखा नहीं करना है। मलेरिया रोधी दवा का सेवन बीच में नहीं छोड़ें। अपूर्ण उपचार कभी नहीं कराएं। वासी अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन का सेवन नहीं करें। ताजा और सादा भोजन करें।

केके की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे जन्नत फिल्म से। संगीत दिया था प्रीतम ने, इस गीत को रचा था सईद कादरी ने।

श्रोताओं, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 2026 को मनाया जाएगा। इसके तहत 17 से 26 जून 2026 तक नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान के तहत राष्ट्रव्यापी जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। झारखंड सहित हमारे देश में रैलियां, कार्यशालाएं और कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प है। आप अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 पर संपर्क कर सकते हैं।

गैंगस्टर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे केके की आवाज में। गीतकार थी सईद कादरी, संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, मादक पदार्थ यानी शराब, तंबाकू, ड्रग्स के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह के नुकसान होते हैं। जानलेवा बीमारियां होती हैं और ये रिश्तों को भी तोड़ता है, मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए नशे वाली जगहों से दूरी बनाए रखें, उन जगहों, पार्टियों या महफिलों में जाने से बचें जहां नशीले पदार्थों का सेवन होता हो। उन दोस्तों से दूरी बनाए रखें जो आपको नशा करने के लिए उकसाते हैं। और समय का ये इशारा है कि अब हमें लेनी होगी अनुमति। तो नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गाँव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है।

वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। अपने जज्बातों को सुनाऊं मैं कैसे, कैसे कहूं क्या क्या ख्वाब सजा रही है ये आंखें आपसे मिलने के बाद। कैसे सुनाऊं अपने दिल में झनकृत हो रहे सपनों को। खुद को भी तो एहसास तक नहीं होता चाहत कितनी है साथी के लिए। बस इतना महसूस होता है सांस के बाद हमारे लिए जो अहम है वो है आपका साथ।

ये थे कुमार सानू और आशा भोसले नदीम श्रवण के धुन पर आप सुन रहे थे समीर के गीत। फिल्म थी बलमा। नजरों की बेताबियों का आलम है, आपको देखकर भी प्यास नहीं बुझती। नजारे कितने भी हसीन हो, आपसे हसीन हो ही नहीं सकती। आंखें कहीं हटते नहीं, जो दीदार आपका कर ले। नजरों का नजरों से गुप्तगु हो रही है, बाहरी चमन आपसे है। आप जहां कदम रखें गुलिस्ता वहीं सज जाते हैं।

दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, राजेश रोशन ने धुन बनाई थी, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को रचा था। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भावगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आहिस्ता आहिस्ता मंजर कुछ ऐसे बदल जाते हैं कि लगता है बस जो भी है यही है, नजरों की अहमियत बदल जाती है, दास्ताने दिल बदल जाते हैं, दिल के जज्बात को तो बस पूछिए मत, दीवानगी की हद पार हो जाती है, चारों तरफ बस वही नजर आते हैं जिन्हें ढूंढता है ये दिल, चारों तरफ अब कहीं दिल लगता नहीं उनके सिवा।

लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे हेना फिल्म से। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। दिल ही दिल में हजारों अरमान रचते हैं, मन ही मन ख्वाबों के महल बनाते हैं। आरजू तो होती है, पढ़ ले वो मेरी आंखों की किताब में लिखी हर वो बात जिसे होठों पे लाना दुश्वार है। चाहत होती है खामोशियां ही सब कुछ बोल दे। अल्फाज बेशुमार होते हैं दिल में, पर होठों पे लाना दुश्वार होता है।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भावगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

0: बहनों, हम महिलाएं घर और बाहर हर तरह के दायित्व को मुस्कुराते हुए पूरा करती हैं। हमारे स्नेह और सहयोग की छांव में परिवार के कई रिश्ते सांस लेते हैं। सच पूछिए तो इस समाज में हम महिलाओं के योगदान से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी सही है बहनों कि हम महिलाएं बहुत व्यस्त रहती हैं, पर इस व्यस्तता में भी हम और आप गपशप के लिए समय निकालती हैं। कार्यक्रम अंगना की ओर से आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। बहनों, ये बात तो विचारणीय है कि जब हम मुस्कुराते हुए अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखती हैं, तो फिर भला हमारा ख्याल कौन रखता है। के लिए जरूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने मन को भी सुंदर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। और इसके लिए एकमात्र उपाय अगर कुछ है तो वो है योग। कई सारे उदाहरणों से ये प्रमाणित हो चुका है कि जो महिलाएं अपने दैनिक दिनचर्या में योग के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल पाती हैं, उनके अंदर काम करने की ऊर्जा और बढ़ जाती है। वो एक साथ कई काम कर पाती हैं एक सुपर वुमन की तरह। दिन में एक ऑफिस कर्मचारी की भूमिका में और घर लौटते ही एक आदर्श गृहिणी की भूमिका में महिलाओं की कुशलता और शालीनता को हम इस वजह से हमेशा सराहते हैं। तभी तो कहते हैं बहनों कि ये योग महिलाओं के लिए वरदान है। कल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और ये दिवस फिर से एक बार आह्वान करता है कि हम सभी महिलाएं अपने तनावपूर्ण जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए योग से हाथ मिलाएं। क्योंकि जिन महिलाओं ने योगाभ्यास किया है वो एक स्वर से ये बताती हैं कि योग करने के कारण उनका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर हो गया है। मैंने कई बार सखियों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बात भी साझा की है कि यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है, मन को संतुलित करता है और हमारी चेतना को पोषण देता है। हमारे अंदर सकारात्मक विचार प्रवेश करते हैं, इसलिए कभी भी हमें योग के अभ्यास को बोझ की तरह नहीं समझना चाहिए। बहनों, ये उथल पुथल भरा दौर है जहां हम अपने जीवन को न जाने कितने रूप में बांटकर अपने दायित्व को पूरा करते हैं। कहीं हम माँ हैं, कहीं बहन हैं, कहीं बहू हैं, कहीं दोस्त हैं, तो कहीं अर्धांगिनी। और इन सारे संबंधों के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। कभी कभी इस कारण हमारे मन को बेचैनी, भय और भ्रम भी घेर लेता है। ऐसे में योग का अभ्यास करने से हमारी मांसपेशियों को शक्ति मिलती है और हम मोटापा से भी बचते हैं। पर बहनों, हम सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे। आज हम शहर की कुछ ऐसी महिलाओं से, ऐसी सखियों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बताया है कि वो कब से योग कर रही हैं और इस योग के अभ्यास के कारण उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और उनके स्वास्थ्य में क्या सुंदर परिवर्तन आया है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं किरण सिंह से, जो एजुकेशन सेक्टर में डायरेक्टर की भूमिका में है।
1: नमस्कार, मैं किरण, जमशेदपुर वासी। तकरीबन 32 सालों से शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। चीजें बदलती रहीं समय के हिसाब से, पाठ्यक्रम बदले, नीतियां बदली शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन एक चीज जो कायम रही वो था, और इनफैक्ट वो है योग। बच्चों को पढ़ाते सिखाते जो मुझे समझ में आया, योग कहीं हमारे आत्मचिंतन को दृढ़ बनाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ये समय के साथ मैंने अनुभव किया। धन्यवाद।
0: और बहनों, अब हमसे जुड़ रही हैं पद्मा प्रसाद जी, जो बताएंगी अपना अनुभव।
2: नमस्कार, मैं पद्मा प्रसाद बिंदेश्वरी, जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, गृहिणी हूँ और साथ ही समाज सेवा और लेखन से भी जुड़ी हुई हूँ। योग की शुरुआत करीब 1992 से की थी। दवा से पहले दुआ और योग करो, बस यहीं से थोड़ी बहुत शुरुआत हुई। लेकिन अपनी माँ को उसी समय से आज तक योग करते हुए देखा है। आज उनको 33 साल हो गए, एक दिन भी नागा नहीं किया होगा। आज 80 वर्ष की उम्र में भी योग की वजह से काफी ऊर्जावान महसूस करती हैं। मैं उन्हीं से प्रेरित हो योग के कुछ नियमों को फॉलो करती रही हूँ। योग मेरे लिए सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन रेखा बन गया है। पहला फायदा, तन से नियमित अनुलोम विलोम और भुजंगासन से आसानी से सीढ़ी चढ़ सकती हूँ और दिन भर एक स्फूर्ति बनी रहती है। दूसरा फायदा, मन से भ्रामरी प्राणायाम से मन बहुत शांत रहता है। योग ने सिखाया कि परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो मन स्थिति बदल दो। तीसरा फायदा, आत्मविश्वास, योग ने मुझे भीतर से मजबूत किया है। श्रोताओं से बस यही कहूंगी, योग महंगा जिम नहीं मांगता, सिर्फ एक दरी, खुली हवा और 20 मिनट का समय। बीमारी पर खर्च करने से बेहतर है हम सेहत में निवेश करें। आकाशवाणी जमशेदपुर के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ तन मस्त मन, यही है जीवन का धन। नमस्कार।
0: सुनते हैं हम बबली मीरा के विचार। ये मैथिली कला में रुचि रखती हैं और बहुत ही अच्छी कलाकार भी हैं, पर ये योग के बारे में क्या कहती हैं, आइए इनसे सुने।
3: मैं बबली मीरा, मैं मिथिला से हूँ और मिथिला पेंटिंग भी करती हूँ। अभी मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। वर्ष 2007 से नियमित योग कर रही हूँ। पहले मेरा वजन अधिक था, रक्तचाप बढ़ा रहता था और घुटनों में दर्द की समस्या थी। नियमित योग और अनुलोम विलोम के अभ्यास से मेरा वजन कम हो गया, रक्तचाप सामान्य रहने लगा और घुटनों का दर्द समाप्त ही हो गया। योग ने मुझे स्वस्थ, सक्रिय और आत्मविश्वासी बनाया है। मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो अपने दैनिक जीवन में योग को अवश्य शामिल करें। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है। धन्यवाद।
0: और अब बारी है विजय लक्ष्मी बेदुला जी की, जो शिक्षिका रह चुकी हैं और अभी साहित्य की दुनिया से भी जुड़ी हुई हैं। बढ़ती उम्र में प्रवेश करने के बाद भी बेदुला जी ने अपने स्वस्थ जीवन का श्रेय दिया है योग को।
4: मैं विजय लक्ष्मी बेदुला बिष्टपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी हाई स्कूल में अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। मैं 2003 से 2008 तक सुबह शाम क्रमबद्ध तरीके से योग किया, उसके बाद भी कर रही हूँ एक ही समय। मुझे इतना लाभ हुआ, मेरा माइग्रेन मुझसे रुक गया, पाचन शक्ति बराबर ठीक है। आज की तारीख में 80 साल की उम्र में भी 10-15 लोगों का भोजन बना लेती हूँ, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं लेती हूँ। जनवरी माह में अपना रक्त जांच करवाई, आपाद मस्तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
0: बहनों, अब हम जानेंगे माधुरी जी से कि उनके सक्रिय जीवन में योगाभ्यास ने किस तरह से सहयोग किया है, क्योंकि वो कई सालों से योग से जुड़ी हुई हैं।
5: नमस्कार, मैं माधुरी मिश्रा साहित्यकार हूँ और योग का भी ज्ञान रखती हूँ। 15 सालों से मैं योग लगातार कर रहे हूँ। उस समय मेरे पैर में तकलीफ हुई थी, मेरा पैर तो ठीक हुआ है, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो गई। अब मैं योग के बारे में बात करूँगी। योग अर्थात जोड़ना। पहले हम अपने आप से जुड़ते हैं, जिसका सशक्त माध्यम है ओम। ओम का उच्चारण करने से हमारा तन मन सब शांत हो जाता है, रिलैक्स में आ जाता है, हम आगे की प्रक्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कपालभाति हम करते हैं। कपालभाति में हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, थोड़ा तेज हो जाता है। उसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है। उसके बाद हम लोग और भी कई आसन करते हैं, या कई आसन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखता है। मंडुकासन, मंडुकासन में शुगर वाले पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है, उनका पेनक्रियाज अच्छा से काम करता है। वज्रासन में हमारा आंत सही रहता है, लीवर सही तरीके से काम करता है। ये सब ये आपके कुछ योग के आसन की प्रक्रिया है। जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं। इस प्रक्रिया को हमें सिर्फ 21 जून को ही नहीं करना है, हमें रोज करना है। और कभी भी योग करें तो आप किसी प्रशिक्षण केंद्र में जाके करें, अपने आप से कभी योग नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि एक गलत आसन से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम महिलाएं परिवार के रीढ़ होते हैं, तो रीढ़ को सही रहना, मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम जब सही रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हम परिवार को भी ध्यान देंगे। तो हमारा सही रहना बहुत जरूरी होता है। तो हम सभी महिलाओं को योग करना चाहिए, नित्य करना चाहिए और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच अपने मन में रखें। यदि हम मन में सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा मन ऐसे ही प्रसन्न रहेगा। तो योग के साथ साथ ये जरूरी है कि मन भी सही रहे। मन जब सही सोचेगा तो हम भी सही सोचेंगे। धन्यवाद।
0: योग भगाए रोग, यही बात कह रही हैं मीनाक्षी झा। आइए हम इनके विचार को जाने।
6: नमस्कार जोहार, मेरा नाम मीनाक्षी झा है। मैं अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। स्वास्थ्य के प्रति मैं शुरू से जागरूक थी, परंतु किसी प्रकार का व्यायाम नहीं कर, दैनिक जीवन में कोई असुविधा भी नहीं होती थी। मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ। जब पहाड़ों पर जाती तो ऊंचाई चढ़ने में परेशानी महसूस होती। योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी शरीर मन और अध्यात्म का मिलन। यह एक क्रिया नहीं है बल्कि प्राचीन जीवन शैली और साधना है। इससे होने वाले लाभ को समझने के लिए इसके तीन मूल आधारों को जानना होगा। इसका पहला आधार शारीरिक स्वास्थ्य है, जो हमें आसनों से मिलता है। जैसे पवन मुक्तासन 1 हमारे शरीर के सारे जोड़ों को क्रियाशील करता है। सूर्य नमस्कार के आसन पूरे शरीर को लचीलापन देता है। मंडूक आसन से पैनक्रियाज सक्रिय होता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार के अनगिनत आसन हैं। यदि उनका अभ्यास हम नियमित रूप से करें तो अपने आप को डॉक्टर और अस्पताल से दूर रख सकते। योग का दूसरा आधार प्राणायाम अर्थात श्वसन नियंत्रण, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुंभक इत्यादि। इसके अभ्यास से शरीर के भीतरी भाग जैसे लंग्स, हार्ट, पेट के भीतरी भाग, नाड़ी इत्यादि को लाभ मिलता है। योग का तीसरा आधार ध्यान है। इसका अभ्यास हमारे मन को शांत, एकाग्र और तनाव मुक्त करता है, जैसे भ्रामरी, उद्गीत, योग निद्रा इत्यादि। योग के द्वारा हम अध्यात्म से भी जुड़ते हैं। योग शरीर को लचीला बनाता है, तनाव से राहत देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, वजन संतुलन में सहायता करता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, याददाश्त एवं अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। अतः मेरा सभी आकाशवाणी श्रोताओं से निवेदन है, योग को अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद।
0: उपासना सिन्हा की अब बारी है, जो कोकिल कंठी स्वर की धनी हैं, कवित्री हैं, पर बहुत सक्रिय भी रहती हैं, और इन्होंने योग के बारे में जो कुछ कहा, आइए उसे सुने।
7: मैं उपासना सिन्हा, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नित्य करें योग, दूर भगाए रोग। भारत में योग की संस्कृति 5000 साल पुरानी है। विदेशों से योग जब योगा बनकर लौटा तब इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति में योग ईसा पूर्व से ही है। मैं योग का अभ्यास सन 2022 से निरंतर कर रही हूँ। मुझे कमर के L4 L5 का प्रॉब्लम है। योग के कुछ आसन से मुझे इसमें बहुत लाभ हुआ है। साथ ही साथ प्राणायाम के माध्यम से मुझे माइग्रेन में भी लाभ हुआ है। प्राणायाम में ध्यान करना सिखाया गया है, ध्यान करना बताया जाता है। इससे हम ध्यान करते हैं तो इससे माइग्रेन में भी मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। कुछ आसन हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ कमर दर्द के चलते, जैसे सूर्य नमस्कार करना मुझे मना है, और भी कई आसन हैं जिसमें कमर पर जोर पड़ता है वो मुझे मना है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मैं जितना करती हूँ उससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ है, माइग्रेन में भी, कमर दर्द में भी, और अपने आप को फिट करने के लिए, मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है उसके लिए, उसमें भी मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। फिर भी जितना मैं कर पाती हूँ उससे लाभान्वित ही हूँ, स्फूर्ति बना रहता है शरीर में। और अगर जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया, आज कुछ छूट गया, और आलस आलस भी रहता है। तो शरीर को निरोग रखने के लिए और मन की शांति के लिए आप सब भी योग को अपनाएं। पुनः आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: तो बहनों, ये थी शहर के कुछ सखियों की बातचीत, जिन्होंने बताया कि योग किस तरह से हमारे काम करने की क्षमता और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है, और साथ ही यह तनाव मुक्त करता है हमें, और एक अच्छी नींद की सौगात भी देता है। योग के कारण ही हमारा शरीर लचीला रहता है, फिट रहता है। इससे हमारे शरीर की जो बदलती हुई आवश्यकताएं हैं वो भी ढल जाती हैं। तो बहनों, आज से आप भी योग का अभ्यास आरंभ करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है।

बहनों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सहरा का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था रामलाल ने।

0: बनो फलों के राजा आम का मौसम है ये, और अभी भी बाजार में हर जगह आम खरीदते हुए लोग दिखाई देते हैं। आम का खट्टा तीखा अचार तो हम सभी खूब खाते हैं, लेकिन आम का मीठा और चटपटा अचार भी हमारे भोजन के स्वाद को दोगुना कर देता है। बहनों, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को आम का मीठा अचार भी काफ़ी पसंद आता है, खासकर परिवार के जो बच्चे होते हैं वो इसे काफ़ी चाव से खाते हैं। तो बहनों, हम इसे घर में भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए हम आप सबों के साथ आज आम का मीठा अचार बनाने की रेसिपी साझा करते हैं। बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे भोजन की थाली में आम के अचार का एक अहम स्थान है। गर्मी के मौसम में तो प्रायः हर घर में आम का अचार डाला जाता है, क्योंकि ये आम अगर हम सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो साल भर तक इसके अचार को हम रख सकते हैं। तीखे अचार का प्रयोग तो लगभग सभी घरों में किया जाता है, पर जो लोग आम का मीठा अचार पसंद करते हैं तो वो इसे भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहनों, इसे बनाने के लिए हम कच्चे आम के साथ गुड़ या चीनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अचार के मसाले भी हम इसमें डालते हैं। बहनों, आइए हम बता दें कि आम का मीठा अचार बनाने के लिए हमें किस किस तरह के सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लें 1 किलो कच्चा आम, उसके बाद 1/2 किलो गुड़ या चीनी, हालांकि इसे आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना भुना हुआ पिसा हुआ, और फिर 1/4 चम्मच आप कलौंजी ले सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप इसका प्रयोग ना करें। इसके बाद आप 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ लें जो पिसी हुई हो, 2 चम्मच हल्दी लें और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर जो नमक का प्रयोग करना है वो आपके स्वाद के अनुसार। बहनों, आम का मीठा अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ कड़े सख्त कच्चे आम लें और उन्हें छिलनी की मदद से छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें हम धोकर 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में फैला कर रखें और फिर सुखा लें। अब बहनों, आइए रसोई घर में, और वहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई को चढ़ाएं और उसमें कच्चे आम के टुकड़े डाल दें। इसमें थोड़ी थोड़ी करते हुए चीनी मिक्स करें और चम्मच से चलाते रहें। सारी चीनी डालने के बाद इसी में हम डालेंगे भुनी हुई सौंफ, मेथी दाना, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। बहनों, इसके बाद कढ़ाई में डालें कलौंजी और स्वाद के अनुसार नमक भी आप इसमें मिक्स करें। बहनों, आप देखेंगे कि पकाने के दौरान चीनी पानी छोड़ने लगी है, तो इस दौरान अचार को धीमी आंच पर ही पकने दें, और जब कच्चे आम की कलियां गल जाएं तो अचार गाढ़ा नजर आने लगेगा, तो इसके बाद आप गैस बंद कर दें। तो बहनों, लीजिए, स्वाद से भरपूर आम का मीठा अचार बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें और फिर चीनी की या कांच की एयर टाइट जार में डालकर इसे स्टोर करें। बहनों, इसे आप लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में पावरोटी या स्नैक्स के साथ भी परोस सकती हैं, और खासकर अपने परिवार में बच्चों को आप रोटी के साथ भी ये देंगी तो वो बहुत ही खुशी के साथ खाएंगे। तो बहनों, ये थी रेसिपी मीठे आम के अचार की। एक बार जरूर ट्राई करें, और फलों के राजा आम का ये जो मौसम है वो गुजर जाए उससे पहले आम का ये अचार जरूर अपने रसोई घर में तैयार करके रख लें। आम के अचार के इस खट्टे मीठे स्वाद के साथ ही आज कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा, और इस वादे के साथ कि कल आप सभी योग का अभ्यास करेंगे और एक सुकून भरी नींद भी लेंगे। तो बहनों, तनाव मुक्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए योगाभ्यास। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

श्रोताओं, 3:55 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे, इसका जीवंत प्रसारण। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dounagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency or NTA has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including reservers, coordinators, police forces and administrators have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. International Yoga Day 2026 or IDY 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country. Former senior IIS officer Dipankar Mukhopadhyay passed away in Kolkata last night after a brief illness. He was 76. Mr. Mukhopadhyay served in various media units at the Ministry of INB and in News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न। किया गया 300 से अधिक सफल ऑपरेशन, रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता की मौत। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के SP को हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और आसपास की फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे तथा कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। उधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले में कुल 7 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: लास्ट बार भी नीट एग्जाम हुआ, बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है NTA की तरफ से, कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं हमारे यहाँ, बट फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग की सभी पदाधिकारी सभी केंद्रों पर स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा को इस बार निभाएंगे।

0: के समापन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना चिकित्सा कोर की सराहना करते हुए इसे सेवा परमो धर्म के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक देश भर में 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी की जा चुकी है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार शहरों के लिए 1 जुलाई से विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची हैदराबाद और रांची दिल्ली उड़ानें तथा इंडिगो की रांची कोलकाता और रांची हैदराबाद सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की रात वाली फ्लाइट भी 1 जुलाई से बंद होगी, जबकि देवघर बंगलुरु फ्लाइट अब सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जो पहले प्रतिदिन उपलब्ध थी। गिरिडीह पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों को देश के लिए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का काल बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक परिसर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। कल तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजाति और ग्रामीण किसानों को सीधे शहरी बाजार उपलब्ध कराना है। नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक दीप माला घोष ने बताया कि जनजातीय विकास परियोजना के तहत 50,000 परिवारों की आजीविका को इस पहल से सुदृढ़ किया जा रहा है।
2: आम महोत्सव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है तो बाजार से इनको जोड़ना है ताकि उनका बिक जाए, लेकिन यहाँ की जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं जो कि मैंगो जूस, मैंगो पल्प या मैंगो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी नजर में झारखंड आए कि यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उनकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत जरूरी है, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहे या उसको प्रोसेस करें।
1: लोहरदगा और गुमला जिलों में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा के मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से शादी समारोह में जा रहे 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं गुमला के पालकोट में बारात से लौट रही कार के पेड़ से टकराने से दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत विवरण के साथ रांची से हमारी संवाददाता।
3: इस बार योग दिवस पर राज्य में एक विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस सामूहिक आयोजन में प्रदेश के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ योग प्रोटोकॉल से जुड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित योग गुरु आम लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। लातेहार के टाउन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन हुआ। लातेहार जिला पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि इस ड्यूटी मीट का मूल उद्देश्य पुलिस की पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।
4: त्रिदिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट पे पलामू क्षेत्र की थी, उस समापन हुआ जिसमें कि तीनों जिले के हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल हुए। ड्यूटी मीट का उद्देश्य यही होता है कि जो पुलिस की पेशेवर दक्षता है वो किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

0: जो उन्होंने सीखा है इस प्रकार से वो क्षेत्र में भी लागू कर पा रहे हैं।
1: टाटा स्टील ने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी के कैडेट्स आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोय को मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए सम्मानित किया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर पूरे 10 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता ने गंवाई जान। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

भूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे प्रिया सरैया की आवाज में, उन्हीं के शब्द थे, धुन बनाई थी सचिन जिगर ने।

मधुबंती बागची और सुमंतु मुखर्जी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे हाउसफुल 5 फिल्म का। गीत कार्तिक कुमार, संगीत या था वॉइट नॉइज कलेक्टिव स्नेक।

डिप्लोमेट फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे अनुराग सैकिया, रोमी, वरुण जैन और कौसर मुनीर की आवाज में। शब्दकार थे कौसर मुनीर, संगीतकार अनुराग सैकिया। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जमशेदपुर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

बी हैप्पी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और मिका सिंह के स्वर में, हर्ष उपाध्याय की धुन पर। शब्दकार थी प्रणव वत्स, हर्ष उपाध्याय और सुकृति भारद्वाज।

जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे रेड टू फिल्म का। गीतकार थे मनोज मुंतशिर, संगीतकार रोचक कोहली।

धड़क टू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाज में। शब्द रचना थी गुरप्रीत की, रोचक कोहली ने धुन बनाई थी।

ये थी अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर, फिल्म 30 सितारे जमीन पर। शब्द करते हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने, और ये थी फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रोताओं, आज 3:55 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तारकेश्वर होगली पश्चिम बंगाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के 23वीं किस्त जारी करेंगे, इसका जीवंत प्रसारण।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा विश्व योग दिवस की बातें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और भारत विस्तार ऐप। भेंट वार्ता सुनिएगा, बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित विषय होगा विश्व योग दिवस पर योग की बातें। भेंट वार्ताकार होंगे योग प्रशिक्षिका श्रीमती कृतिका कुमारी, भेंटकर्ता अनिमेश कुमार बख्शी।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका का कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे। रिले आकाशवाणी दिल्ली से।

0: श्रोताओं, दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 3:05 पर सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत सूफी गीत। कलाकार होंगी अविदा परवीन। आदिवासी लोकगीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे संताली लोकगीत। कलाकार होंगे टीका राम हांसदा। समय 3:15। 3:30 से आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे।
1: And I'm Saira Mujtaba with the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु

0: की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

0: और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु

0: के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

प्रेम रोग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। शब्दकार थी संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज थी। आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के धुन पर। फिल्म थी रामलखन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। अमर उत्पल के तर्ज पर आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। फिल्म थी शहंशाह और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर रांची समेत झारखंड के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो जिले के गोमिया पंचायत स्थित जलमीनार परिसर में एक नए इंटेक वेल और पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कोनार नदी में निर्मित इस इंटेक वेल और नवीनीकरण परियोजना से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल की सौगात मिली है।
1: समस्या था पेयजल का, ईएमएफटी मंच से स्वीकृत करा करके उसका उद्घाटन किए हैं। लोगों को कोनार डैम का पानी मिले, पहले की जो योजनाएं थी कई जगहों पर पानी का संचालन नहीं हो पाता था, बेहतर रूप से पानी नहीं जा पाता था। एडिशनल टंकी के बनने से अब गोमिया के आसपास के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा।
0: रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुभकामनाएं देते हुए उनके राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण, सादगीपूर्ण जीवन तथा प्रेरणादायी नेतृत्व की सराहना की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए उनके योगदान को सभी के लिए अनुकरणीय बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कल मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में भी तैयारियां की जा रही है। माहिल स्थित योगाभ्यास केंद्र में योग प्रशिक्षक नमित नाग ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली स्वस्थ बनी रहती है।
2: आज के समय में योग की बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आज योग अगर है तो हम स्वस्थ हैं। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें, और हमें डेली कम से कम 5 से लेकर 15 मिनट तक जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम अभी 24 घंटा में लगभग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहते हैं, तो हमें मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है और अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है।
0: झारखंड हाईकोर्ट में नामकुम अंचल में जमीन म्यूटेशन दस्तावेजों में हेर फेर से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की अनुमति देने पर 2 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कैबिनेट विजिलेंस विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिया कि वे अपने निर्णय से एसीबी को अवगत कराएं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई 2026 को होगी। स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत सीसीएल ने बेहतर कल के लिए प्लास्टिक कचरा कम करना विषय पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया। इसका मकसद एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर सीआईपीईटी रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा की और व्यवहारगत परिवर्तन व सामूहिक जनभागीदारी पर जोर दिया। मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को लेकर आज 5वें दिन हजारीबाग जिले के कई प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत 10 सांस्कृतिक दलों ने 20 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान लोगों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीनों जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी

0: रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार NEET UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत सूफी सॉन्ग। कलाकार हैं अविदा परवीन।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संताली लोकगीत। कलाकार थे टीकाराम हांसदा एवं साथी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत ठुमरी एवं हरी। सबसे पहले सुनते हैं ठुमरी। कलाकार है पंडित जगदीश प्रसाद।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थी पंडित जगदीश प्रसाद। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं होरी, कलाकार हैं मालिनी राजू रक्कर।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे होरी, कलाकार थी मालिनी राजू रकार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। आइए सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम के तहत मगही लोकगीत। कलाकार हैं हरिवंश प्रसाद सिंह।

लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मगही लोकगीत, कलाकार थे हरिवंश प्रसाद सिंह। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:55 होने वाले हैं। आइए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे, इसका जीवंत प्रसारण।

0: जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल

0: एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
0: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, these were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल अभय, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the

0: low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you

0: समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहां पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
1: जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति
1: जी हाँ बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
2: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
2: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई
0: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion it's not just a culmination of tradition of legacy of heritage of sweetness of all the things that now people are expecting from the government The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम भारत केसरी लह प्रणाम स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয় যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না প্রধান সেবক বলেন উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রণাম শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত লোকপ্রিয় একজন রাষ্ট্রবাদী রাজ্যপাল আমাদের সরকারের প্রধান পরিচালক সম্মানীয় আর এন রবিজি এবং জনতা জনার্দন আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই তারকেশ্বরের পুণ্যভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ব্যস্ততম শিডিউলের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন তার কারণ আমি অল্প কথায় নিবেদন করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি উড়িষ্যায় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির সঙ্গে প্রোগ্রাম করে এখানে এসেছেন তাকে কলকাতা ফিরতে হবে তিনি আজকে লোকভবনে থাকবেন আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together. Being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: It relates to the goat production, the laboratories that are there. It relates to the ports that are being developed. It relates to the farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ, प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद

बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है,
बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान

जैसी महान संतानों से नाता रहा हो उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा

नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काटमानी शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के
थेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को

0: विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करने के विशेष अवसर पर यह कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:33 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोताओं, आज के अत्यधिक डिजिटल होते युग में साइबर सुरक्षा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। ये हमारे व्यक्तिगत डेटा, वित्तीय संपत्तियों और गोपनीय व्यावसायिक जानकारी को हैकर्स जैसे खतरों से बचाने के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। श्रोता साथी, आइए बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। डेटा गोपनीयता की सुरक्षा। श्रोताओं, आज हमारा अधिकांश व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा ऑनलाइन मौजूद है। साइबर सुरक्षा इसे अनाधिकृत पहुंच और चोरी से बचाता है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और डिजिटल लेनदेन के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर ठगी का खतरा बढ़ गया है। मजबूत सुरक्षा उपाय आपको आर्थिक नुकसान से बचाते हैं। व्यावसायिक निरंतरता। व्यवसायों के लिए साइबर सुरक्षा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखती है और सिस्टम को या डेटा हानि जैसे आपदाओं से बचाती है। पहचान की चोरी को रोकना। श्रोता साथी, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपकी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है ताकि धोखेबाज आपके नाम का दुरुपयोग न कर सकें। श्रोताओं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा

कंप्यूटर रखें, किसी भी अनजान ईमेल मैसेज या लुभावने लिंक पर क्लिक न करें। श्रोता साथी, साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमें साइबर सुरक्षा के उपायों का उपयोग करना चाहिए और साइबर अपराधों की रिपोर्ट करनी चाहिए।

0: Akashvani at 90.
1: श्रोताओं आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है श्रमिक महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या और समाधान। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर मनोरमा सिद्धेश और उनसे बातचीत कर रही हैं मालती चौधरी।
2: श्रोताओं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर मनोरमा सिद्धेश, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं मेनोपॉज से संबंधित समस्या एवं इसके उपचार के विषय पर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मेनोपॉज क्या है।
3: मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये तो स्त्री के शरीर में मतलब कुछ कुछ चेंज होता है
2: जी,
3: जिसमें कि जब स्त्री का तीन स्टेज होता है पूरे जिंदगी में। पहला तो हो गया कि उसका मासिक शुरू होना, दूसरा जो होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जिस उम्र में वो बच्चा को जन्म देती है, और तीसरा जो होता है जिसमें उसका मासिक बंद हो जाता है। मासिक शुरू होना से लेके मासिक बंद होने तक तीन स्टेज उसको मान सकते हैं हम लोग। तो मासिक जो शुरू होता है वो होता है, उसको बोलते हैं मेनार्की, और वो आपको 12 से लेकर के 14 साल की उम्र में, 10 से, आजकल तो थोड़ा अर्ली भी हो जाता है क्योंकि लड़कियों का खान पान थोड़ा सा चेंज आ गया है, तो अगर उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य अगर बहुत अच्छा है, मोटी उटी है, तो उसको जल्दी हो जाएगा, तो वो 10 साल में भी हो जाती है। तो उससे लेकर के 14 साल तक हो जाना चाहिए मासिक। अगर 14 के बाद भी नहीं होता है, 15 तक हम लोग इंतजार करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर उसका भी हम लोग हार्मोन का सब जांच कराते हैं। और ये जो मासिक धर्म है ये पूरी तरह से हार्मोन डिपेंडेंट होता है। शरीर में, स्त्रियों के शरीर में, पुरुषों के शरीर में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि शरीर में बदलाव लाते हैं। तो ये मेनोपॉज जो है ये मासिक बंद होने का प्रक्रिया है।
2: ये मतलब किस उम्र में होता है?
3: ये होना चाहिए 45 से लेकर के 50 के अंदर में हो जाना चाहिए बंद। अच्छा। अगर 45 के 50 के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, 55 तक, कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी महिला में 55 साल की हो गई, मासिक होते जा रहा है उसको, तो आती है से दिखाने, तो उसका बहुत सारा फिर हम लोग जांच करते हैं कि आखिर क्यों नहीं बंद हो रहा है। उसको हो सकता है कि उसके गर्भाशय में कोई मांस बढ़ गया हो, मतलब ट्यूमर हो गया हो, या उसका जो अंडाशय है उसमें कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई न कोई कारण है जिसके कारण उसका मासिक नहीं बंद हो रहा है।

0: तो फिर हम लोग उस हिसाब से उनका इलाज करते हैं।
1: सामान्यतः या 45 से 50 की उम्र में
0: बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये जो है अगर एक साल तक लगातार अगर मासिक धर्म नहीं आता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं हम लोग।
1: अच्छा।
0: और ये नहीं कि 2 महीना 4 महीना नहीं आया तो मेनोपॉज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर लगातार 1 साल तक किसी महिला को मासिक धर्म नहीं हो रहा है तो उसको मान लिया जाता है कि अब इसको मेनोपॉज हो गया
1: जी। तो इस दौरान जो मेनोपॉज का जो काल होता है उसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं या क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि मेनोपॉज हो गया?
0: मेनोपॉज होने के का मतलब है कि उसका हार्मोन का कम होना शरीर में।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी जिंदगी के साथ हैं, अगर वो हार्मोन कम हो जाएगा तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन तो होगा ही। हमेशा वैसे महिलाओं को बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ाहट होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगा, कभी एकदम लगेगा कि बहुत मेरा सर बहुत गर्म हो गया, अब बहुत इरिटेट होने लगेगी, मैंने ठीक से बात नहीं करेगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनको रात में नींद नहीं आएगी, उनकी नींद में भी बहुत कमी आ जाती है, प्लस उनको बहुत आलस लगेगा। जितना स्थिरता से काम एक पहले जो करती थी वो अब नहीं कर पाएगी, हमेशा हर चीज में उसको कुछ न कुछ लगेगा कि कुछ नया चीज हो गया है और गुस्साए रहेगी।
1: ये हार्मोन्स के कमी से ऐसा होता है?
0: हार्मोन्स के कमी से हमारे ये इसके लिए दो हार्मोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इसके कमी होने से, एस्ट्रोजन की कमी से हड्डी भी बहुत कमजोर हो जाएगी, तो इसलिए। और दूसरा चीज क्या है कि एस्ट्रोजन घट जाने से वैसे औरतों में हार्ट अटैक होने का भी बहुत डर बढ़ जाता है। जिसका मेनोपॉज नहीं हुआ है वो बहुत ज्यादा इन हार्मोन से प्रोटेक्टेड रहता है, उसको बहुत ज्यादा इससे राहत मिलती है कि उसको हार्ट का डिजीज ज्यादा नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक कम होता है। मर्दों में ज्यादा हार्ट अटैक होता है, औरतों में कम होता है, उसका एक कारण एस्ट्रोजन का होना भी है। और जैसे ही उसको मेनोपॉज होता है ये दोनों हार्मोन बहुत जल्दी से कम होने लगते हैं, तो कम होने के कारण उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि उनकी वजन बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने के कारण उनको शरीर में भारीपन लगेगा। वजन बढ़ना मतलब पानी ज्यादा जमा हो जाना।
1: अच्छा।
0: ऐसा नहीं है कि वजन बढ़ गया तो उनका मांस बढ़ गया, वैसा नहीं होता है, पानी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे मेनोपॉज के बाद औरतों को थोड़ा सावधानी ज्यादा रखना होता है, और उनको जैसे अपने काम के अलावा अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना होगा। वो अपना खान पान में अपना ज्यादा फैटी डाइट उसको उनको कम करना होगा। और जैसे मान लो कि वो पहले 2 बार खाती थी तो अभी उनको थोड़ा जल्दी जल्दी 3-4 बार थोड़ा थोड़ा जिसमें कि चर्बी की मात्रा कम हो वैसा खाना खाएं। सलाद खूब खाना चाहिए उनको, उनको डेली टहलना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि अपने शरीर को वो स्वस्थ रख सकें।
1: अच्छा। तो इससे एक्सरसाइज और सैर करने से शायद वजन में
0: कमी रहेगी, वजन उनका स्थिर रहेगा, नहीं तो वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनको और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है।
1: तो ये तो शारीरिक परेशानी की बात थी, लेकिन इसमें क्या कोई मानसिक परेशानी भी?
0: मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा, उनको डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन का मतलब कि उनको लगेगा कि अब हम कोई काम के नहीं है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये सोचना।
1: हाँ हाँ।
0: तो ये सब चीज जो है डिप्रेशन होता है उसमें। दूसरा चीज है कि वो जो है बहुत ज्यादा सोचने लगती है कि जा अब तो हम किसी काम के नहीं रहे, तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। उनको किसी चीज का कमी नहीं हुआ है, हार्मोन का कमी हुआ है तो उसको बैलेंस करके रख सकती हैं अपने आप को। उनका स्किन जो है वो भी एकदम लूज होने लगता है।
1: अच्छा।
0: स्किन का जो ग्लो रहता है, माने जो चिकनाहट था चाहे चमक था, वो खत्म हो जाता है मेनोपॉज के स्थिति में। तो शरीर पर तो ध्यान देना ही होगा क्योंकि ये तो सबके लिए है, ये तो निश्चित है कि मेनोपॉज होना ही है उम्र पे।
1: तो ये चिंता या अवसाद या डिप्रेशन की बात आपने कही।
0: हाँ, डिप्रेशन होता है, नींद भी करें? उनको नींद भी कम आती है
1: जी।
0: मेनोपॉज के बाद उनको नींद कम आएगी, बहुत जल्दी जग जाएंगी, और उनको बार बार पेशाब होगा। एक बार पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, हॉट फ्लशेज उसको बोलते हैं, सर में ही बहुत ज्यादा गर्मी अचानक से एकदम लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म, मैंने बेचैन हो जाए।

0: वो
1: तो इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है इन
0: उसको
1: सब?
0: नियंत्रित करने के लिए उनको पहले तो अपना खान पान में थोड़ा बदलाव लाना होगा, वजन नहीं बढ़ने देना है। उसके लिए खान पान में हरी सब्जी वगैरह खूब खाएं, मीठा चीज नियंत्रित करें, मीठा चीज ना खाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस अपने खान पान में ही नियंत्रित करना है। अंकुरित चना मूंग ये सब खाना चाहिए उनको, चावल नहीं खाना चाहिए। हालांकि चावल जो वर्किंग है माने फैक्ट्री वगैरह में चाहे जहां भी काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो तो चावल अगर वो चेकअप पहला अपने हर साल कम से कम एक बार वो अपना चेकअप कराएं ताकि उनका रेगुलर, जैसे कैंसर तो बहुत भारी बीमारी है और वो हो सकता है ना, तो उनको ब्रेस्ट का दो ही कैंसर हमारे देश में ज्यादा होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा जो है वो सर्वाइकल कैंसर माने यूट्रस का कैंसर। तो ये दोनों के लिए भी उनको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए एक बार कम से कम। पैप स्मियर कहते हैं जो अंदर से थोड़ा पानी निकाल के हम लोग वजाइना से और उसको जांच करवाते हैं कि कहीं इनको कुछ हो तो नहीं रहा है। और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके लिए अपना ब्रेस्ट चेकअप करा लें, मैमोग्राफी करवा लें साल में एक बार, ताकि ये दोनों से वो अपना निश्चिंत रहे कि नहीं हमको कुछ नहीं हो रहा, हम बिल्कुल फिट हैं। और अगर वो अपने को सोचेंगे कि नहीं हम फिट हैं तो वो फिट रहेंगे, जहां उनको डिप्रेशन हुआ सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं अब तो हम बहुत कमजोर हो गए, चाहे हमको बहुत खराब लग रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो चिड़चिड़ापन तो रोका जा सकता है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमको क्यों चिड़चिड़ापन होगा? मेनोपॉज तो सभी औरतों को होना ही है एक दिन, जब शुरू हुआ है तो बंद भी होगा।
1: तो ये पूरा डिपेंड करता है कि महिलाएं अपनी जीवन शैली को कैसे लेकर बढ़ें, आहार पर ज्यादा ध्यान दें और कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, इस सब से ये कंट्रोल किया जा सकता है।
0: एक और बात है, मेनोपॉज के बाद ना औरतों में अक्सर मतलब महिलाओं में देखा जाता है कि ज्यादा उम्र होने के बाद ना पेशाब रोकने में थोड़ा असमर्थ हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी उनको पेशाब लगता है
1: जी।
0: तो उसके लिए भी उनको थोड़ा एक्सरसाइज अगर करें वो अपना किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, तो उनको एक्सरसाइज वो बता देंगी तो उससे क्या होगा कि उनका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्सर आती है हमारे पास महिलाएं कि मैडम देखिए ना पेशाब नहीं रुक पाते हैं, तो पेशाब करने जाते हैं उसके पहले ही होने लगता है
1: जी।
0: तो और रात में और थोड़ा ज्यादा ही, तो ये सब पर तो उनको ध्यान देना होगा कि समय रहते अपने आप को।
1: का क्या उपाय है?
0: इसको रोकने का उपाय है कि आप अगर पेशाब थोड़ा ही सा लगा तो पहले ही कर लीजिए। और दूसरा एक एक्सरसाइज होता है,
1: अच्छा
0: हाँ, जो कि उनको हम बताएंगे कि आप ऐसा एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे बहुत हद तक ये समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो इसकी दवा भी है।
1: अच्छा, इससे कुछ सेक्सुअल लाइफ में भी कोई अंतर आता है क्या?
0: हाँ, उनका सेक्सुअल लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा उनको इसमें कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है चिड़चिड़ा होने का।
1: अच्छा,
0: चिड़चिड़ा होने का ये भी फैक्टर कम है, क्योंकि मेल फैक्टर तो उसको तो कभी कम नहीं होता है, लेकिन फीमेल में कम हो गया तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, तो फिर वो भी बेचारी थोड़ा डिप्रेशन में जाएगी।
1: डॉक्टर साहबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि हमारी बहनों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रमिक महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या और समाधान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर मनोरमा सिद्धेश और उनसे बातचीत कर रही थी मालती चौधरी। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

मोनाली ठाकुर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बागी फिल्म का गीत, गीत कुमार का था और संगीत था मीत ब्रदर्स का। श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी को। नमस्कार।

0: ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने। कार्यक्रम का प्रसारण FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हुआ। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार बुलेटिन, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।

0: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress. as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
0: Odisha mein aarthik gatividhiyan nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai purvi Bharat ke vikas se Bharat ka vikas. Isliye हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the state day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. The Prime Minister will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan reviewed the organizational preparations of the BJP in Goa during the party's State Executive Committee meeting held in Panaji today. Addressing party workers, Murugan stressed the importance of ensuring that central government schemes reach every eligible citizen. He called for further strengthening of the party organization across all 40 assembly constituencies in the state. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination FDC drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. In cricket, Afghanistan have set a target of 219 runs for India in the third and final ODI at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. Electing to bat first, Afghanistan were all out for 218 in 44.2 overs. Captain Hashmatullah Shahidi was the top scorer with 102 runs off 131 deliveries. In reply, India were 37 for no loss in 4 overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधीर श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं जॉन पीटर इक्का और साथियों के स्वर में उरांव लोकगीत।

जॉन पीटर इक्का और साथियों के स्वर में गाए उरांव लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत समाचार बुलेटिन सुनिएगा।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये 6,47,000 करोड़ रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय 16 निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैती देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयम् अलभत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः

संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम

0: एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कृषक मित्रों, विश्व योग दिवस 21 जून के उपलक्ष में आज सुनिएगा बातें किसान भाई बहनों के लिए योग। भेंट वार्ताकार होंगी कृतिका कुमारी, जो कि एक योग प्रशिक्षिका हैं। लोक गीतों के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं खरीफ फसल की बुआई के संदर्भ में। कृषक मित्रों, जून का महीना है और ऐसे समय में बादल भी मेहरबान है, मतलब ये कि आ गया है खरीफ की बुआई का सुनहरा समय। आज हम बात करेंगे खरीफ फसल की बुआई कैसे करें कि पैदावार भी बढ़े और लागत भी कम आए। आइए सबसे पहले बातें करते हैं कि इसकी बुआई का सही समय और मिट्टी की तैयारी क्या होनी चाहिए। खरीफ की बुआई मॉनसून की पहली अच्छी बारिश के बाद करनी चाहिए, मतलब ये कि 75 से 100 मिलीमीटर बारिश जब हो जाए, मिट्टी में 6 से 8 इंच तक नमी आ जाए तभी इसकी करनी चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि झारखंड और बिहार में ये समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रहता है। जमीन की तैयारी के लिए 3 काम करने चाहिए। पहला, मॉनसून के पहले एक बार मिट्टी पलटने वाली हल से जुताई करनी चाहिए, इससे दीमक और कीट के अंडे मरते हैं। दूसरा, जुताई के बाद पाटा लगा देना चाहिए, ऐसा करने से ढेले टूटते हैं, नमी बढ़ती है और बीज बराबर पड़ती है। तीसरा, बुआई से 15 दिन पहले खेत खाली रखें, खरपतवार उगे तो हल्की जुताई कर दें। और अब बातें कर लेते हैं बीज, बीज दर, उपचार और बुआई की विधि के बारे में। कृषक मित्रों, कहते हैं कि अच्छा बीज यानी अच्छी फसल, मतलब कि अगर आप बीज अच्छा लेते हैं तो अच्छी फसल ऐसे ही तैयार होने की गारंटी मिल जाती है। धान की फसल के लिए संकर बीज का चयन करना चाहिए, 8 से 10 किलोग्राम संकर बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। मक्का के लिए 7 से 8 किलोग्राम, सोयाबीन के लिए 30 से 35 किलोग्राम और अरहर के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होती है। बीज उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम बीज के थायरम 1 ग्राम कार्बोडाजिम मिलाकर उपचारित करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी धान के लिए 20x15 सेंटीमीटर, मक्का के लिए 60x20 सेंटीमीटर और सोयाबीन के लिए 30x10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि आप लाइन से बुआई करेंगे तो निराई गुड़ाई आसान होगी और पैदावार 15% अधिक होगी। और हाँ मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि बीज 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई से ज्यादा ना बोएं। हल्की मिट्टी में 3 सेंटीमीटर और भारी मिट्टी में 4 सेंटीमीटर तक बोना चाहिए। बुआई के 10 से 12 दिन तक खेत में जल जमाव ना होने दें। ज्यादा बारिश हो तो निकास की नाली बना लें। खरीफ में ज्यादा पानी से ज्यादा नुकसान होता है। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ की बुआई में देरी मत कीजिए, पर जल्दबाजी में बिना तैयारी के बीज भी मत डालिए। समय पर बुआई, उपचारित बीज और लाइन से बुआई करने पर 15 से 20% तक पैदावार बढ़ जाती है। और एक बात कृषक मित्रों, खरीफ की बुआई के संदर्भ में यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे किसान कॉल सेंटर में फोन लगाकर भी बात कर सकते हैं। नंबर है 1800-180-1551, यानी 1800-180-1551। कृषक मित्रों, इस महत्वपूर्ण बात के बाद आइए बातें करते हैं विश्व योग दिवस की। कृषक मित्रों, दुनिया भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक महत्वपूर्ण और प्रमुख आयोजन है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला

0: और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन भारतीय योग परंपरा के माध्यम से लोगों में समग्र कल्याण और शांति की भावना को जागृत करना। मित्रों, विश्व योग दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है किसान भाई बहनों के लिए योग। भेंट वार्ताकार हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती कृतिका कुमारी और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं विश्व योग दिवस की। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मनाती है और इस बार हम सभी मिलकर विश्व योग दिवस मना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है कृतिका कुमारी, जो कि एक योग प्रशिक्षिका है। तो आइए बातें करते हैं। कृतिका जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: क्या कुछ कहना चाहेंगे विश्व योग दिवस को लेकर?
1: योगा डे पे हम लोग सबसे पहले सब लोग उठ के योग करें, उस दिन प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। तो शुरुआत उसी दिन से करें, अगर कोई लोग नहीं करते योग तो स्टार्ट उस दिन से करें, फिर अपने जीवन शैली में योग करते रहे बहुत अच्छा लगेगा। योग एक प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है अपने जीवन शैली में, बोलते हैं ना, साइंस हो गया, फिर फिजिकल, फिर मानसिक तौर पे सब कुछ कंट्रोल करता है योग। योग करे तो फिर आप हॉस्पिटल की ओर नहीं जाएंगे।
0: कहा भी जाता है कि योग का मतलब होता है हिंदी में प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो यदि हम अपने अंगों को जोड़ते हैं और यदि की अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये योग की श्रेणी को महत्व देता है। आप क्या कहेंगी?
1: सही है। देखिए, योग जो होता है कि आपके एंजाइटी हुआ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, फिजिकल लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजिंग करता है योग। तो मैं तो इतना बस बोलूंगी कि योग अगर जो लोग नहीं करते हैं अपने योग डे से स्टार्ट करें, इंटरनेशनल योगा डे हमारे, अगर नॉर्मल लोग योग करते तो लोग नहीं सीखते, लेकिन वही चीज अगर मोदी जी हमारे करने लगे, हमारे चीफ मिनिस्टर करे, तो लोगों को लगता कि हाँ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कम से कम किसी को भी देख के लोग सीखे कि हाँ योग इज वेरी इम्पोर्टेंट।
0: योग जो है वो सेलिब्रिटी से मतलब प्रभावित होते हैं कि अगर वो करेगा तभी हम करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ही कहीं नुकसान देती है। तो शुरुआत को खुद से करनी चाहिए और खुद को ही एक सेलिब्रिटी मानना चाहिए। क्या कहेंगी आप?
1: हाँ, ये तो आजकल के मतलब लोग वही कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज कर रहे हैं योग। जो वो लोग करते हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं, आज के बच्चे लोग, कि हाँ वो योग करे तो हम क्यों नहीं करें, वो इतने फिट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग एक दिन योग किए दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। योग को अपने लाइफ में एवरी डे करना है। आपके पास अगर बहुत ज्यादा बिजी है तो 15 मिनट एवरी डे आप करें, एवरी डे। तो योग करने से, बोलते हैं ना, सब कुछ लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरा भाग्य खराब है, ये खराब होगा, तो वो योग से ही आप अपने आप को डिसिप्लिन में डाल सकते हैं और अपने आप को चेंज, योग ही कर सकता है आपको चेंज, आपके लाइफ को चेंज और आपको चेंज। तो इसलिए बस यही कहना चाहती हूँ कि योग कीजिए। और जैसे कि अभी मैं माँ बनी हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि मतलब क्या मैं क्या थी और क्या हो गई। तो अब तो मैं योग कर रही हूँ तो सब कुछ बहुत ठीक है। से ज्यादा तो मानसिक तौर पे आदमी बहुत ज्यादा बिगड़, मतलब ये हो जाता है, परेशान हो जाता है माँ बनने के बाद। तो अभी तो मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं 99% अभी ठीक हूँ योग करने से।
0: अच्छा।
1: इसलिए मैं लाइफ में योग को, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ इसलिए बता रही हूँ, योग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। और योग के साथ साथ अपने खान पान को भी आप डिसिप्लिन पे रखते हैं। योग से ही आपके क्रेविंग्स होते हैं, जो भी आपको लगता है कि बाहर का ये खा ले वो खा ले, तो वो कंट्रोल होता है। योग एक कंट्रोलिंग भी है।
0: और इस बार का तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय भी रखा गया है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और यह जो थीम है वो बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए केंद्रित होता है। क्या कहेंगी इस पर?
1: हाँ, ये तो सच है, ये ऐसा तो होता है और ये होता है और हुआ भी है। तो मैं यही कहूंगी कि योग, आप सब योग करें। बार बार यही बोलूंगी, हर लाइन में यही बोलूंगी कि योग करें और स्वस्थ रहे। योग से ही होगा, योगा ही योगा सही होगा, डू योगा नो रोगा।
0: बिल्कुल सही, डू योगा नो रोगा,
1: करेक्ट।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये आपसे कृतिका जी जानना चाहेंगे कि आप कब से योग से जुड़ी और कितने दिनों से आप योग कर रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं।
1: जब मैं 15 साल की थी तब से योग करते आ रही हूँ, और अभी मैं 2021 या 22 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ योग में, और भी सात सात आसनों में। मेरा
0: अच्छा,
1: पहला आसन रहा है हिंदोला आसन, जिसमें मैं 21 मिनट स्टे की थी, और बहुत सारे आसन में स्टे की थी। और इसलिए योग तो मतलब मेरे लाइफ में, जितना मुझे खाना नहीं पसंद है, घूमना नहीं पसंद है, उतना मुझे योग पसंद है। और मेरे योग बहुत ज्यादा, मैं खुद से रिसर्च करती हूँ, मैं खुद से रिसर्च करती हूँ योग में, और अलग अलग डिजीज का रिसर्च करती हूँ। तो इसलिए मुझे, मतलब बोलते ना, एक पैशन होता है, नो नॉट पैशन, मुझे योग बहुत ज्यादा पसंद है। वो एक, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है अपनी लाइफ में, तो मुझे बस एनी टाइम योग, कुछ किसी को करना है तो मैं योग बताऊंगी, हमेशा एनी टाइम रेडी रहती हूँ। इसलिए मुझे योग बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं सबको यही बोलूंगी कि योग अपने लाइफ में पसंद नहीं भी करना है तो कम से अपने हेल्थ के लिए आप योग करें।
0: अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए योग को जरूर शामिल करना चाहिए और
1: ऐसा
0: योग को
1: नहीं है कि
0: करना चाहिए।
1: आप अपने आप को बस यही चाहेंगे कि हम फिट रहे, मेरा बॉडी सही रहे, नहीं, आप एक बार योग स्टार्ट तो कीजिए, आप अपने आप सब कुछ सुधरता चला जाएगा आपके लाइफ में। बस आपको ज्यादा नहीं, 2 दिन 3 दिन करके देखना है कि क्या चेंजेस आ रहा है हमारे बॉडी में। हाँ, तो बस 2 3 दिन के ही योग से आपके बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट रोज मेडिटेशन करते हैं शाम में, रात में सोने से पहले, जिसको नींद नहीं आती है, तो उससे भी आपको लगेगा कि हाँ, कोई अगर नींद का पिल्स लेते हैं तो वो सब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस योग अच्छे से करना होगा।
0: और एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मान लीजिए कि कोई अगर न्यूली योग शुरू करना चाहता है तो शुरुआत में उसे कौन कौन से योग आसन करने चाहिए।
1: मैं तो यही बोलूंगी कि आजकल तो जैसे बहुत ज्यादा एडवांस तरीका ढूंढते हैं, कोई भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से योग नहीं चाहते। लोग को लगता है हम म्यूजिक करके योग करें, अलग अलग टाइप का कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही सब कुछ सीख ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं यही बोलूंगी, योग अगर स्टार्ट करें तो बहुत ही स्टार्टिंग से आप 3 महीना का टाइम ड्यूरेशन ले और छोटा छोटा छोटा छोटा सीखे। पहले आप हल्का सा मेडिटेशन सीखे, 5 मिनट का, 5 मिनट का प्राणायाम सीखे, 10 मिनट आप योग आसन सीखे। सबसे पहले तो आप हल्का फुल्का बॉडी बॉडी को वार्म अप करें, एज अ वॉक करके या फिर हल्का प्राणायाम करके, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके। ये करने के बाद आप छोटा छोटा छोटा योगा सीख सकते हैं, हल्का भुजंगासन, हल्का सा सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। शुरुआती का 3 महीने में आप 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन फिर आपको आपको खुद ही मन करेगा कि हम उसको और टाइम बढ़ाए। तो बस सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि आप योग करें तो सूर्य नमस्कार करें, ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, प्राणायाम में, मेडिटेशन में खत्म करें। मंत्रास भी होते हैं तो आदमी स्पिरिचुअल लाइफ से भी जुड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ता है, क्या मंत्रास है, अपने संस्कृति से भी जुड़ते हैं लोग। मेरा ये मानना है कि आप योग से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और मतलब सब कुछ है योग आपके लाइफ में, अगर आप चाहे तो, आप अपने अचीव करना चाहे तो।
0: मतलब योग से नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं अभी बताई ना, मंत्रास होते हैं उसमें छोटे छोटे, आप बहुत कुछ भी नहीं करेंगे तो आप ओम तो बोलेंगे ना, तो वो ओम ही बहुत ज्यादा, मतलब ओम ही सब कुछ है।
0: हाँ, ओम की शक्ति में ही योग की शक्ति समाई हुई है।
1: करेक्ट। आप बोलते ना योग, हाँ, ये ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राज योग है, तो ये सब सब योग ही है।
0: और यहाँ तक कि मैंने पढ़ा भी है ग्रंथों में कि अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक झंझनाहट उत्पन्न होती है, और वो जो झंझनाहट होती है वो कहीं ना कहीं योग का ही काम करती है।
1: हाँ, वो होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप आप करने लगे, बहुत ज्यादा मन से करने लगे, ऐसा नहीं ओम बोले फिर थोड़ी देर में म्यूजिक सुन लिया, ऐसा नहीं। योग का मतलब है कि आप बहुत ही ध्यान से, आप 5 मिनट ही समय दीजिए योग को, लेकिन बहुत ही स्थिरता से मन को शांत करके आराम से योग कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ओम का तो खैर बहुत सारा बेनिफिट है भी, अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत पुराना पुराना डिजीज को कंट्रोल करता है ओम।
0: अच्छा।
1: ओम मेडिटेशन।
0: क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं तो शुरुआत में भी यही बोली, अभी भी यही बोलूंगी, जो लोग योग नहीं करते हैं और जो लोग करना चाहते हैं तो 21 जून से स्टार्ट कीजिए, और हमेशा योग करते रहिए, बहुत अच्छे से करिए।
2: तो किसान भाई बहनों, ये थी कृतिका कुमारी जी जो कि एक योग प्रशिक्षिका थी। और हमारे योग की जो संस्कृति है, परंपरा है, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उसका महात्म्य क्या है, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, इन सभी बातों पर बहुत अच्छे से अपनी बातों को साझा कर रही थी योग प्रशिक्षिका कृतिका कुमारी जी। कृतिका कुमारी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

कृषक मित्रों, अभी आप किसान भाई बहनों के लिए योग विषय पर योग प्रशिक्षिका कृतिका कुमारी जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। पाहे ध्वनि अंकन पर आधारित थी यह भेंटवार्ता। आइए डाल लेते हैं एक नजर मौसम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारत मौसम विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसके आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर बाद इस सप्ताह भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के साथ बारिश हो सकती है, गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी बह सकती हैं। आज दिन का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और कल दिनांक 21 जून 2026 का अधिकतम तापमान रह सकता है 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 38%। हवा की दिशा होगी दक्षिण से पूर्वोत्तर की ओर और रफ्तार रहेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मित्रों, मौसम की इस जानकारी के बाद एक नजर बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल भी उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 5870 से 5888 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3780 से 3790 रुपए प्रति क्विंटल, अन्य 3270 से 3345 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5890 से 6280, मध्यम 3380 से 4470 और अन्य 3470 से 3575 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12290 से 12339 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल का भाव रहा 8500 रुपए से 9500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7900 रुपए से 8900 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल का भाव रहा 11534 से 11875 रुपए प्रति क्विंटल। कृषक मित्रों, यह थी बाजार भाव की सूचना और आइए अब बातें करते हैं कुछ फसलों के फसल सलाह के बारे में। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन से धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी गई है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने हेतु लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त माना जाता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधा अनुसार लंबी क्यारियों में बांटना चाहिए। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीज उपचार करना चाहिए। 5 किलोग्राम बीज के लिए बावस्टीन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इस घोल को बनाकर इसमें 12 से 15 घंटे के लिए बीज को डाल देना चाहिए। उसके बाद बीज को बाहर निकालकर किसी छायादार स्थान में 24 से 36 घंटे के लिए ढककर रखना चाहिए और पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहना चाहिए। बीज में अंकुर निकलने के बाद पौधशाला में इसे छिड़क देना चाहिए। अब इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

शारदा सिन्हा और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। अब इस लोकगीत के प्रसारण के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, पर चलने से पहले छोटी बात, योग को अपने दिनचर्या में हमेशा शामिल करें और डेली 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर करें। रखिए अपना स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

ये था आकर्षक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। हमारे केंद्र से प्रसारण अब थोड़ी ही देर में रांची केंद्र से होगा। सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन शाम 7 बजे और 7:10 पर जिले में आजकल।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कराची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देशभर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए किए वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग, गोड्डा समेत कई शहरों में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य में आज से पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान देवेश तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
2: छात्रों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का शुरुआत किया गया, जो झारखंड की पहचान है। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया। और जो विकास के कार्य है 3 से आकांक्षी जिलों में चल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीपीओ रूपक कुमार ने बताया कि जांच अभियान चलाकर विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन और जांच की गई।
3: नीट परीक्षा जो कि दिनांक 21/6/2026 को प्रस्तावित है, उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों का सत्यापन कर उन्हें मूर्त रूप देने में ईआरओ एवं एईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर के विभिन्न चरणों, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तार से जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे और योग के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इधर साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम फूलो झानो इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होगा। साहिबगंज के जिला आयुष पदाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने लोगों से निरोग रहने के लिए योग अपनाने की अपील की।
5: जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बढ़ती उम्र में हम इस योग का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, कैसे हम जुड़े, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। सब योग केवल रोग को नहीं ठीक करता, वो मन को भी ठीक करता।
0: उधर हजारीबाग जिला आयुष समिति और आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई और कल होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। वहीं गोड्डा में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 75 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। राजधानी रांची स्थित संत पॉल कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के CTSP पारस राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम में झारखंड की निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। फाइनल में अब भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई जिलों में निकाली गई जागरूकता रैली। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सबको छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जन

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सरायकेला शैली छऊ नृत्य को एक नया आयाम मिलने वाला है। इग्नू के माध्यम से कलाकारों के लिए 6 माह तथा 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसकी जानकारी पद्मश्री ससधर आचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से यह कोर्स प्रारंभ होगा। पद्मश्री ससधर आचार्य ने कहा कि
2: मई महीना में इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि 15 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। एक कोर्स है 6 महीने का डिप्लोमा, दूसरा कोर्स है 1 साल का डिप्लोमा। अगर ये डिप्लोमा को लोग करते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली समय में मिलेगा, क्योंकि NEP के तहत ऐसा है कि जिस एरिया में जो डांस फॉर्म है, जो संगीत है, जो थिएटर है, फोक थिएटर है, उसी का ही टीचर को रखा जाएगा।
1: जिले में रफ बाइकिंग एवं मॉडिफाइड बाइकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अभिभावकों से जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा कम उम्र के बच्चों और किशोरों को बाइक चलाने के लिए ना दें। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि
3: उसमें उनके पेरेंट्स की ज्यादा गलती है। बच्चा अपने से तो गाड़ी पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स की कहीं ना कहीं अनदेखी है या मूक सहमति है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स समझाएं, वो तो अबोध बालक बालिका है, ताकि उनके लापरवाही से ना दूसरे की जान खतरे में आए, ना उनकी खुद की स्वयं की जान।
1: कोटप्पा एक्ट के तहत जिले में निकोटिन युक्त पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि
4: किला मुख्यालय के जो बाजार है उनके विभिन्न दुकानों में कोटपा एक्ट के अनुपालन और कोटिन युक्त पान मसाला की मार्केट में उपलब्धता क्या है और कैसे, उसको लेकर हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं। निकोटिन युक्त गुटखा पान मसाला भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कहीं कुछ प्रोडक्ट का संदेह प्राप्त होता है हम लोगों को, तो हम लोग उसकी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज रहे हैं।
1: स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक कराने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 6 टीम तथा पुरुष वर्ग की 25 टीमों को शामिल किया जा रहा है। आयोजन की तैयारी अंतिम चरण पर है और खिलाड़ियों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस संबंध में DSA के सचिव मोहम्मद दिलदार ने कहा कि
5: सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 25 पुरुष टीमों और 6 महिला टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस बार हमने 2 वेन्यू चुना है। बिरसा स्टेडियम सरायकेला में महिला फुटबॉल और पुरुष फुटबॉल के मैच खेले जाएंगे, 2 ग्रुप के मैच खेले जाएंगे, जहां 10 पुरुष फुटबॉल टीम और 5 महिला टीमें वहां भाग लेंगी और बाकी 15 टीमों का मुकाबला अर्जुना स्टेडियम खरसावां में होगा।
1: डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ष 2006 से लगातार जिला फुटबॉल लीग का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष भी जिला फुटबॉल लीग के जरिए ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन और जिले में आजकल प्रसारित हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। शाम के 7:16 हुए।

ये था बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में, पहले कुछ संदेश।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
0: रात के 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।
3: ता ता ता गिन दिन दिन तक दिन दिन तक ता ता ता गिन दिन दिन तक।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना जिसे गाया था अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों ने। समीर थे शब्दकार, संगीतकार अदनान सामी, फिल्म थी लकी।

0: साजन चले ससुराल, यह था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों का गाया हुआ। समीर ने इस गीत को लिखा था और सुरों से सजाया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में गीत और भी हैं, लेकिन पहले कुछ संदेश और फिर गीत संगीत का सिलसिला जारी रहेगा।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
5: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आतिफ असलम और साथियों की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत आप सुन रहे थे, प्रीतम की बनाई तर्ज पर। फिल्म थी बजरंगी भाईजान।

सागर का लिखा गीत आप सुन रहे थे हनी बनी की बनाई धुन पर, हनी बनी और सागर की आवाजों में। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेज माही।

रहना है तेरे दिल में। इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रूप कुमार राठौर और साथियों का गाया हुआ। समीर ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी हैरिस जयराज ने। और अब सुनिए शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर हसरत जयपुरी का लिखा गीत किशोर कुमार का गाया हुआ। फिल्म का नाम कल आज और कल।

फिल्म कल आज और कल में किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें पहले सुनिएगा देश और दुनिया की खबरें, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में।

0: कुछ ही पलों में समाचार संध्या का प्रसारण होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
4: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. the headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep three-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
9: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
8: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
10: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
8: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he also launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at a superfast pace for Bengal's development.
10: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
8: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency NTA has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
4: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. He said the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. He added that the project will enhance facilities for devotees and strengthen Kolhapur's position as a prominent religious tourism centre. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India.
5: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
11: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India. Now, the world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
5: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. Talking to Akashwani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
12: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
5: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
8: At least 5 devotees lost their lives and 40 to 50 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvad Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga, with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
8: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
13: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashwani correspondent.
14: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
15: नमस्कार, धन्यवाद।
14: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
15: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जैसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
14: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस

0: हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाएगी, हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा की भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार इसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया, लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारत वर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में, दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है, उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6,000 से ज्यादा, लोनार में भी 6,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने दिखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1,00,000 तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10,00,000 तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर।

0: योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा।
1: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में, हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, पर 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है। तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए, तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भाई CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए। तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
0: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
1: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव योग स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था। ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड है तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हैं। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
0: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
1: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है। अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे में, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते या करने जाते, कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
5: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दिग दिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: चूंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर

0: मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहाँ आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया,
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज,
2: इतना

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hai vari jaau re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiske bol hai chalo re mai ram siya darshan. Aapke saath harmonium par sangat kar rahe hain रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: भागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: देखकर महे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lal Chai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने